देखो देर हो जाती है और कई बार चीजें और टॉपिक ना वक्त से पहले रिलीज कर दिए जाते हैं और वो समझ भी नहीं आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तमाशा मूवी जब रिलीज हुई थी तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन कुछ साल बाद लोग इस मूवी को देखते हैं और अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। सच एन इंस्पिरेशन। एनीवेज मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली अनुराग कश्यप जो है ना वो रिसेंटली रिलीज्ड मूवीज के डाउनफॉल को देखकर थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि क्या फायदा है, जब मूवी रिलीज हो गई है तब आप उसको उतना प्यार दे नहीं रहे हैं, आगे जाकर जब आपको रियलाइज होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तब आपको मजा आएगा और तब आपको अफसोस होगा कि अरे यार देख लेता तो ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई अब जो एक्टर्स नाराज हो रहे थे फिल्में ना देखने की वजह से, अब तो डायरेक्टर्स भी खफा खफा से घूम रहे हैं कि भाई हमारी मूवीज देखो अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। हाँ इनडायरेक्टली सही बोलना तो यही चाह रहे हैं। आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, मैं भी बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

अच्छा, आपने अपनी स्मार्ट वॉच क्यों खरीदी थी? चलो बताओ कि आप उसमें कैलोरीज, हार्ट बीट, ना जाने कौन कौन से स्टेप्स, वॉलपेपर चेंज करना, कॉल्स पिक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ आप उसमें करना तो चाह रहे थे, पर क्या किया? क्या नहीं किया? पर अगर हम इंडिया की बड़ी ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली वाली सिटी की बात करें तो दैट इज बेंगलुरु सिटी, राइट? सो बेंगलुरु सिटी में एक ऑटो ड्राइवर जो है ना, उसने अपनी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। बताओ कैसे? एक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी स्मार्ट वॉच का वॉलपेपर ही QR कोड लगाया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप उसे पेमेंट दे सकते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है? मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऐसे ही क्लेवर आइडियाज और भी लेकर आएगी, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। Out loud moments to larger than life jungle ka madness. This entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa haja.
5: Singapore, bored ho, game khelni hai. चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
6: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो एक जमाने में पर्सनल कंप्यूटर का पीसी शॉर्ट फॉर्म बहुत फेमस हुआ था, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा का पीसी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। बिकॉज लोग इंडिया में तो नाम कमा लेते हैं, लेकिन विलायत जाके नाम कमाना आसान नहीं है। आपको और मुझे तो पता ही है यार, इंडिया से सिंगापुर आके नाम कमाना, डॉलर कमाना, इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क यार। एनीवेज, प्रियंका चोपड़ा ने कन्फर्म कर दिया है अपना अगला हॉलीवुड प्रोजेक्ट, जिसमें एंजेलिना जॉली के साथ वह नजर आने वाली है। ओए होए, अभी तो फिलहाल वो इंडिया में ही शूट कर रही हैं और उनकी अपकमिंग मूवी भी हिंदी ही एक्सपेक्टेड है। आरजे यूनिवर्स मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा, मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार,
4: रम्मा
3: Bollywood chart busters of the week, full on Renuka style.
4: Renuka!
0: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: देखो रियलिटी शोज तो अब थोड़े फीके पड़ने लगे हैं। हाँ, जो रियलिटी इवेंट्स है ना, उनमें अगर आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मिल जाए ना, तो लोग आपको थोड़ा ज्यादा प्यार दे देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा नोरा फतेही कह रही है। अभी रिसेंटली फुटबॉल की ओपनिंग में वो डांस करते हुए नजर आई, और अब तो यार जो ऑनलाइन इंटरनेट सर्च इंजन है ना, वो उन्हें इंडिया की फेमस डांसर्स कह लीजिए, कोरियोग्राफर्स कह लीजिए, एक्ट्रेस कह लीजिए, इन सारी कैटेगरीज में काउंट कर रहा है। मतलब एक बार के लिए आलिया दीपिका पीछे जा चुकी हैं और नोरा फतेही हाय गर्मी आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
3: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लग गया, तुम भी ना

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: क्या आप पांचवी कक्षा से तेज है?
1: अरे यार चलो ठीक है, सच्ची सच्ची बताओ, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप हर तरह के सेक्टर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो चाहे हिस्ट्री का हो, वो चाहे जेनरिक अपना हो, है ना, वो चाहे साइंस हो, वो चाहे सिंगापुर हो, वो चाहे ज्योग्राफिक हो, हर तरह की कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखने वाले, बता दूं आपकी नॉलेज जीतने वाली है, बिकॉज सिंगापुर का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गेम शो आ चुका है, दैट इज द लायन सिटी चैलेंज, इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए वरना बाद में कहेंगे नुपुर देर हो गई। हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करना है लायन टाइप करके, LION, और सामने से जो आपको सवाल पूछे जाएं उनका आपको जवाब देना है। चलो पार्टिसिपेट करो, इसके स्टेजेस धीरे धीरे से मस्ती मीडिया नेटवर्क से अनलॉक होते रहेंगे और आप इंजॉय करते रहेंगे मस्ती मॉर्निंग शो।

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: अरे देख रहे हैं
1: तो देखने दो
0: जो

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: शादी किस लिए होती है? डिवोर्स के लिए। अब डेटिंग क्यों होती है? ब्रेकअप के लिए। मतलब ऐसा कहा तो जा रहा है पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारी डेटिंग शेटिंग की जो बातें निकल कर आई हैं उसमें साउथ एंड बॉलीवुड का मिलन बताया जा रहा था। हाँ जी, अगर हम रजनीकांत जी के एक्स दामाद यानी धनुष की बात करें तो धनुष जो है और मृणाल ठाकुर, इन दोनों के अफेयर के बारे में कहा जा रहा था। इन दोनों ने पब्लिकली तो कभी कन्फेस नहीं किया लेकिन हाँ, अब इनका ब्रेकअप जरूर सुनने में आ रहा है। हाँ, अब आप सोचोगे कि अभी थोड़ा

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: एक जबरदस्त कहानी है।
2: और टाइटल क्या है फिल्म का?
1: वेलकम टू द जंगल।
3: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
4: दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अक्षय कुमार।
3: From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
5: Welcome to the jungle.
3: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
6: Trailer khatam, paisa hajam.
7: Raaz ki baat batau. मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। देखो कच्चा पक्का तो पता था, लेकिन अब पक्का पक्का भी पता चल गया है कि अपनी जो सामंथा रूथ प्रभु हैं, वो मॉम बनने वाली है। कितना अच्छा लगता है ना कि जब चीजें हल्की हल्की पता हो और फिर धीरे धीरे करके फुल पता चल जाए और आप जैसा सोच रहे थे वैसा ही निकल कर आए, फिर आपको ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आए हाय आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सो हेलो हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड सामंथा रूथ प्रभु की बात करूँ तो इन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में ही शादी करी डायरेक्टर से, एंड अभी रिसेंटली इनकी एक मूवी की सक्सेस पार्टी में केक कटिंग वाली वीडियो निकल कर आई जिसमें इनका बेबी बंप निकल कर आ रहा है। तो भाई अब डायरेक्टर्स के थ्रू बता दिया गया है कि हाँ हाँ सामंथा रूथ प्रभु जो है वो अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही है और उनके चेहरे की स्माइल अलग ही निकल कर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है भाई, एक्टर्स की चेहरे की स्माइल सोशल मीडिया की जान होती है यार। आज रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है मेरी जान।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: देखो अगले साल 6 जनवरी को LA चलना तो बनता है। हाँ, अब LA ही क्यों जाना है? बिकॉज अगर हम LA की बात करें तो वहाँ दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ओ हो, आपने तो कहीं और दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए थे कि वहाँ तो ये पॉपुलर है, वो पॉपुलर है। नहीं, दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स के सक्सेस को देखते हुए, अगले साल से हर 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ डे बनाया जाएगा। ओ माय गॉड, अलका याग्निक डे, लता मंगेशकर डे, ये सारे डेज तो सुने थे, लेकिन रिसेंट मार्केट में निकल कर आया है दिलजीत दोसांझ डे। ओ माय गॉड, अब सिंगापुर में इनका कॉन्सर्ट आए तो देखा जाए जरा। हाँ, आज ये रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ यहाँ पे बनी हुई थी, और अब देखने दिखाने की बातें आने वाले शोज में एंजॉय कीजिए आप भरपूर तरीके से, एंड डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आरजे नुपुर आपके साथ थी। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा on Radio Musti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Musti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath. Gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Musti Hangout.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
3: दे आर फ्रेश। दे आर

0: 2 ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
1: हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सभी का स्वागत है। ये है वही शो जहाँ पे आने के लिए हम हफ्ते भर का वेट करते हैं, और क्यों हो भी ना, क्योंकि 90s ने हमको यही तो सिखाया है, इंतजार और पेशेंस, राइट। कैसे एकदम हफ्ते में एक बार कोई शो आया करता था और फिर नेक्स्ट एपिसोड का टीजर छोड़ के जाते थे और हमको लगता था अब पूरा का पूरा एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। सो वही फील को वापस लाते हुए पूरे हफ्ते के इंतजार के बाद मस्ती 90s मिक्स टेप और आपकी 90s वाली अंतरा बिल्कुल यहाँ पर हाजिर हो चुकी है। एंड यहाँ पे से अब 3 घंटे हम हिलेंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 90s के उन खजानों में बिल्कुल डूबते हुए जाएंगे, गानों को इंजॉय करेंगे। और भाई पूरा एक जमाना यहाँ पे जो रिवाइंड हम करते हैं भाई 90s में लाइफ कैलेंडर से जो है बिल्कुल नहीं चलती थी, सीजन्स के हिसाब से चलती थी। स्कूल खुलने का सीजन, मैंगोस का सीजन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीजन, नए कैसेट आने का सीजन, दिवाली मूवी रिलीजेस का सीजन और शादियों में सेम सॉन्ग्स बार बार बजने का भी सीजन उस वक्त हर चीज का ना अपना टाइम होता था और शायद इसीलिए एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती थी क्योंकि हर चीज हर वक्त अवेलेबल नहीं थी। आम सिर्फ गर्मियों में फेवरेट मूवी टीवी पे सिर्फ एक दिन, नया एल्बम आया तो पूरी कॉलोनी में डिस्कशन शुरू, और जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होती थी तो उसका असर कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल्स तक पहुंच जाता था 90s का बॉलीवुड भी सिनेमा ही थोड़ी ना था, सिर्फ लाइफस्टाइल का अपडेट हुआ करता था। एक हीरो ने ब्रेसलेट या कोई पेंडेंट पहना, मार्केट भर गया उसी से। हीरोइन ने हेयर स्टाइल बदली, पार्लर्स बिजी हो गए। एक गाना हिट हुआ, पूरा साल वही बचता रहा। और इसी बीच में हम अपनी छोटी छोटी दुनिया भी जो है वो जी लिया करते थे, स्कूल बैग से, गली क्रिकेट से, ऑडियो कैसेट से, टीवी सीरियल से, समर वेकेशन से, और वो हजार छोटी बातें जो उस वक्त नॉर्मल सी लगती थी और आज प्राइसलेस लगती है। तो चलिए फिर से खोलते हैं यादों का वो पिटारा जहां मेमोरी के साथ भी जुड़ा हुआ है 90s वाले गाने, और हर गाने के साथ होती है एक कहानी। यह मस्ती 90s मिक्सटेप, स्टे ट्यून्ड।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: आपको पता नहीं लेकिन मेरा तो बड़ा ही गुम हुआ करता था ये उस टाइम पे, और आई एम श्योर दैट मेरे जैसे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बात को काफी रिलेटेबल जो है फील कर पाएंगे। वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप। भाई 90s के स्कूल बैग्स में एक चीज, बैग्स में भी नहीं, पूरा जो किट था उसमें एक ऐसी चीज थी जो काफी एडवेंचरस हुआ करती थी। ना ये पेंसिल, ना मैं इरेजर की बात कर रही हूँ, स्केल नहीं नहीं नहीं नहीं, वाटर बॉटल का कैप, दैट इज राइट। भाई वो जो मिल्टन की हमारी ब्राउन कलर की, ब्राउन और बेज का एक बड़ा ही मिक्स हुआ करता था जो कि स्टैंडर्ड था। ओके, कलर्स तो बहुत बाद में आए हैं, जिसकी स्ट्रैप हमेशा परमानेंटली गीली ही गीली रहती थी, लाइक फॉर सम रीजन है ना, रहती तीरा। बट कमिंग टू द कैप, ओके सीरियसली आज तक समझ में नहीं आया वो कैप आखिर ज्यादा कहाँ था। स्कूल साल की शुरुआत में बॉटल फुल कंप्लीट, ठीक है, बॉटल भी, कैप भी और स्ट्रैप भी, सब परफेक्ट। फिर धीरे धीरे पहले स्ट्रैप टूटा, फिर बॉटल पे स्क्रैचेस आ गए और एक दिन कैप ऑफिशियली मिसिंग हो गया। एंड फनी थिंग इज किसी ने उसे चोरी नहीं किया, किसी ने जानबूझ कर नहीं हटाया, वो बस गायब हो जाता था जैसे उसकी अपनी कोई सीक्रेट लाइफ हो। फिर होते थे जुगाड़ शुरू, ठीक है, कोई दूसरी बॉटल का कैप ट्राई करो, कोई प्लास्टिक कवर बांध दो, कोई

सीधी रखो वरना बैग में पूरा सब कुछ गीला हो जाएगा और अक्सर हो भी जाया करता था, मतलब नॉट अ बिग डील, राइट? और वो कलरफुल प्लास्टिक के बॉटल्स याद है आपको, उसके रेड कैप, ब्लू कैप, ग्रीन कैप, कार्टून स्टिकर वाले, कभी मिल्टन, कभी लोकल मार्केट वाले। पूरा स्कूल पर्सनालिटी जो है बॉटल से भी जज किया करता था, और लंच ब्रेक में बॉटल भी सोशल लाइफ अपनी जी ही लेती थी, नहीं सब एक दूसरे की बॉटल से पानी पी रहे हैं, कोई बॉटल एक्सचेंज चल रहा है, कोई फ्रिज जैसा ठंडा पानी लेकर, मतलब वो तो इसको एकदम सुपरस्टार बन जाता था वो बंदा या बंदी। आजकल ये जो है ना वो है क्या कहते हैं उसको, स्टैनली करेक्ट, याद ही नहीं आता, हमेशा मैं भूल जाती हूँ भाई, इतने कमाल फैंसी, कितने महंगे, साथ साथ में लीक प्रूफ लिड्स है, एडवांस्ड लॉक्स है, एंड तब बॉटल और कैप का रिलेशनशिप ही इतना अनस्टेबल हुआ करता था, लेकिन फिर भी काम तो सर एंड मैडम चल जाया करता था, क्योंकि 90s में चीज़ें परफेक्ट नहीं होती थी, पर स्टोरीज बहुत देती थी। ऑनेस्टली अगर 90s स्कूल आइटम्स का रीयूनियन हो ना, सबसे ड्रामेटिक एंट्री आई थिंक वाटर बॉटल कैप की ही होगी। सब पूछेंगे इतने सालों से कहाँ छुपा बैठा था रे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, चलिए ये सारी 90s की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ में चलते रहने चाहिए 90s के गाने भी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
2: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musty Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
2: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
0: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

कसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है मेरे दोस्त, क्यों क्यों? ना ना ना ना, मैं वहाँ वाले मेलोडी की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग 90s में है। ओके भाई, 90s के बच्चों ने पेशेंस पे कोई मोटिवेशनल बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये एक चीज ने हमको पेशेंस जरूर सिखाया था, मेलोडी टॉफी। If you remember, अगर नहीं है तो याद अभी आ जाएगा। So, आज के चॉकलेट्स तो पहले ही बाइट में जो भी सरप्राइज देना होता है वो दे देते हैं, लेकिन मेलोडी ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही सस्पेंस था सबको। एक तो उसकी पैकेजिंग इतनी अल्टीमेट, राइट? अगेन द ब्राउन्स वी आर गोइंग इनटू द गोल्ड एंड द ब्राउन रैपर, एंड सिर्फ एक तरफ से ही वो टॉफी वाला फोल्ड रहना, एंड यू कैन पिक्चर इट, राइट? एंड उसमें डार्क ब्राउन कलर से लिखा हुआ कर्सिव में मेलोडी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एनीवेज, उसके कलर्स दो डिफरेंट होते थे, अंदर चॉकलेट कैरमेल और अंदर एकदम चॉकलेट वाला। तो वेल, सबको पता था अंदर चॉकलेट है, लेकिन कब आएगी यही तो मिस्ट्री थी। टॉफी को मुंह में डाला, ठीक है, और फिर जर्नी शुरू होती थी, पहले कैरमेल, फिर कैरमेल, फिर और कैरमेल, और दिमाग में बस एक ही सवाल कि अब आएगा, अब नहीं नहीं, और फिर अचानक चॉकलेट सेंटर, ऐसी विक्ट्री फीलिंग जैसे ट्रेजर हंट कंप्लीट हो गया हो। एंड द फनी थिंग इज, कई बार इंपेशेंस में लोग डायरेक्टली जो है उसको बाइट मार देते थे, लेकिन जो मेलोडी खाने वाले असली एक्सपर्ट्स, ओके, एक्सपर्ट्स वेट करते थे, क्योंकि हमें पता था जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। और मेलोडी का एडवर्टाइजिंग मैजिक भी कमाल का था, पूरे देश को एक ही सवाल पे पूछने पे मजबूर कर दिया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्योंकि दोस्त उधर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, ओके? आज भी हम ये लाइन सुनते हैं तो स्माइल आ जाती है। 90s में चॉकलेट्स और टॉफीज सिर्फ स्नैक्स नहीं थे मेरे दोस्त, उनके साथ कहानियां भी जुड़ी हुई थी, कैरेक्टर्स थे, जिंगल्स थे, एंटिसिपेशन था। आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, क्लिक करो सब कुछ मिल गया, ऑर्डर करो आ गया, तब बेस्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता था, और शायद इसीलिए उसका मजा भी ज्यादा था। मेलोडी ने हमें एक छोटी सी लाइफ लेसन दी थी, बिना लेक्चर दिए, बिना स्पीच दिए, कि कभी कभी सबसे अच्छा पार्ट शुरुआत में नहीं मिलता, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली आज भी अगर ऐसे कोई मेलोडी हाथ में दे दे तो अंदर से वो 90s वाला बच्चा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कि देखते हैं सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। रेडियो वर्सी 24/7 लाइव पर, ओ माय गॉड, समहाउ आई क्रेव मेलोडी जो है नाउ। कोई तो खिला दो। ओके, लेट्स मूव ऑन, स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
3: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh-out-loud moments to larger-than-life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
4: Welcome to the jungle.
3: Hurry, book your tickets now. Welcome to the Jungle, releasing island-wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
5: Trailer khatam, paisa hajam.
6: मेटल की सीढ़ियां ही क्यों? ये तो मे को भी आज तक समझ में नहीं आया। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ। यहां पर भाई 90s के बॉलीवुड के विलन्स जो है बहुत टैलेंटेड होते थे, लेकिन एक चीज में उनकी चॉइस सरप्राइजिंगली अगर आप आज नोटिस करें तो सिमिलर हुआ करती थी। चाहे स्मगलर हो, डॉन हो, गैंग का लीडर हो, या इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, सबके हाइड आउट में ये चीज कॉमन थी, मेटल की सीढ़ी या वो ठक ठक ठक टक्कर की आवाज जो होना। सीरियसली आपने शायद नोटिस ना किया हो, हीरो विलेन को ढूंढते ढूंढते किसी वेयर हाउस में पहुंचता था, और वहां ड्रम्स, चेन्स, डिन सी लाइटिंग और एक बड़ी सी मेटल की स्टेयरकेस। मतलब अगर सीढ़ियां नहीं है तो अड्डा ऑफिशियली कंप्लीट ही नहीं हुआ। और इसका एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था। सो 90s के एक्शन डायरेक्टर्स को मेटल स्टेयरकेसेस बहुत ज्यादा पसंद थे, क्योंकि उनसे सीन इंस्टेंटली काफी ड्रामेटिक लगता था। हाइट मिल जाती थी पूरे सीन को, मल्टीपल लेवल्स मिल जाते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एको, हीरो के फुटस्टेप्स ठक ठक ठक पूरे हॉल में गूंज जाते थे, एंड ऑडियंस को लगता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। मतलब माहौल जो है वो बन गया। और फाइट सीन्स, ओ माय गॉड, कोई रेलिंग से टकरा रहा है, कोई सीढ़ियों पे गिर रहा है, कोई ऊपर से जंप कर रहा है, एक स्टेयरकेस पूरे एक्शन सीक्वेंस का सपोर्टिंग एक्टर बन जाया करता था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज विलन्स का एक्चुअल बिजनेस क्या था ये कभी क्लियर ही नहीं होता था सच्ची में, लेकिन उनके पास जायंट वेयर हाउस और मेटल के स्टेयर जरूर होते थे। आज के फिल्म्स में स्लीक ऑफिसर्स, ठीक है, सीक्रेट बंकर्स बनाए हुए हैं, हाईटेक लोकेशंस, तब मेटल स्टेयरकेस की डेंजर का ऑफिशियल का एक सिग्नल हुआ करता था। एंड ऑनेस्टली जस्ट मोमेंट स्क्रीन पे वो स्पाइरल सा या फिर इंडस्ट्रियल स्टेयरकेस दिख जाए, हमें पता चल जाता था कि क्लाइमैक्स बड़ू दूर नहीं है। 90s के एक्शन फिल्म्स आज भी इतने ही एंटरटेनिंग इसी वजह से लगते हैं, क्योंकि उन्होंने डेंजर को सिर्फ कैरेक्टर से नहीं आर्किटेक्चर से भी क्रिएट किया था। आज भी कोई भी ऐसी 90s की मूवी उठा के देख लो ना, ऐसे ऑटोमेटिकली वो स्टेयरकेस ऐसा रिजेम्बलेंस मारेगा ना कि अरे ये तो अंतरा ने बात की थी, ये तो वही वाले स्टेयरकेस है। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही और बातें बिल्कुल करेंगे, लेकिन 90s के गाने सुनते हुए

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Musti 24/7 Live. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5.

0: दिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: ये तो बहुत ही हिलेरियस है क्योंकि मैं आज की डेट में भी सेम टू सेम करती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूँ 90s वाली आंत्रा यहाँ पर आपके साथ। भाई 90s के घरों में एक काम ऐसा था जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता था बट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता था। देखिए एक तो ऑलरेडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ फ्रिज इन द हाउस हमने देखा हुआ है बिकॉज वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इट हमारे रहते रहते एंड इट वॉज ये गैजेट देखकर ही हमें मतलब ये ठंडा कर देता है, इसमें बर्फ जम जाती है, ओह माय गॉड। एंड कई बार तो ऐसा होता था कि मोहल्ले की दूसरी आंटियों के घर में जाए, मतलब हर किसी के घर में नोबडी कुड अफोर्ड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब नया नया आया था, तो अक्सर दही खराब ना हो जाए या कोई खाना खाने की चीज़ जो है ना वो खराब ना हो जाए। और अगर आपका फ्रिज छोटा है या फिर आपके पास फ्रिज है ही नहीं तो बगल वाले घर में जाकर उनके यहाँ पे रखवा दिया करते थे हम लोग सामान। आजकल के रेफ्रिजरेटर्स में जैसे आइस डिस्पेंसर वगैरह है बट फ्रिज से आइस ट्रे निकाल के बर्फ निकालना, ओहो हो हो भाई अभी क्या है, बटन दबाओ आइस आ गई, तब पहले फ्रीजर खोलो फिर ट्रे बाहर निकालो और फिर होता था असली मैच शुरू, क्योंकि बर्फ ट्रे से आसानी से निकलती ही नहीं थी। सबका अपना अपना टेक्निक होता था। सो मेरा टेक्निक जो मैं तभी भी करती थी और आज की डेट में भी मुझे वही सही लगता है, ट्रे को हल्का सा ट्विस्ट करो तो सारे बर्फ जो है ना अलग अलग करके बाहर आ जाते हैं। सो वो एक हुआ करता था। कोई किचन के स्लैब पे हल्का सा टक टक करता था या जोर जोर से ठाक ठाक ठाक ठाक करके मारा करता था, कोई पीछे से प्रेस करता था, कोई ट्रे को हवा में यूं हिलाता था और हर एक्सपर्ट का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हुआ करता था कि मुझे दो मैं निकालता हूँ। और फिर एक क्यूब निकला, दो निकले, तीसरा सीधा फ्लोर पे। पूरा ऑपरेशन रीस्टार्ट। बर्फ चाहिए भी बस एक या दो ही क्यूब्स होती थी लेकिन ट्रे के साथ स्ट्रगल ऐसा जैसे माइनिंग कोई ऑपरेशन चल रहा हो वहां पे। समर वेकेशंस में तो ये डेली एक्टिविटी थी, रसना के लिए, रूह अफ़ज़ा के लिए, कोल्ड कॉफी के लिए, ये बस पानी ठंडा करने के लिए बर्फ निकाल दो। और वो ओल्ड स्कूल वो प्लास्टिक के आइस ट्रेज आपको याद है, वो ब्लू कलर के, वाइट कलर के, थोड़ा सा बेंड करो तो क्रैक होने का डर भी रहता था लेकिन फिर भी सालों चलती थी। 90s में सिंपल काम भी प्रोसेस हुआ करते थे दोस्त, और प्रोसेस में कहानियां बनती थी। आज कन्वीनियंस ज्यादा है, तब टेक्निक ज्यादा थी और हर घर में कोई ना कोई आइस ट्रे एक्सपर्ट जरूर होता था। 90s के किचन की मेमोरीज भी कितनी यादगार सी लगती है ना, क्योंकि वहाँ हर छोटी चीज में थोड़ा सा स्किल लगता था, थोड़ा एटीट्यूड भी लगता था। एंड ऑनेस्टली यू नो I just miss those days completely. They were simple, right? इसीलिए आज तक आदतें भी वैसी बनी हुई है। ट्विस्ट कर दो आराम से, इट वर्क्स ब्यूटिफुली, यू नो दैट, राइट? स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.
0: आपकी नॉलेज, आपकी जी।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। देखा तो आपने कई बार होगा और सोचा भी होगा कि ये होता क्यों है, मतलब why is it there, why does it happen, what am I talking about, let me tell you. Welcome back, मस्ती 90s mixtape चल रहा है रेडियो मस्ती 24/7 live पर। मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर। 90s के बच्चों को एक चीज देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी और आज के बच्चे शायद इसको कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि जब टीवी ऑन करो और स्क्रीन पे आ जाए वो रेनबो वाले कलर बार्स। अरे वाह। ना ना ना ना, कोई कार्टून नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई सीरियल नहीं, बस रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और बाकी कलर्स की वर्टिकल लाइंस। लेकिन फिर भी हम स्क्रीन के सामने यूं ही बैठे रहते थे क्योंकि हमें पता होता था अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना पता होता था ना। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि ये कलर बार्स सिर्फ ऐसे ही डेकोरेशन के लिए है, लेकिन एक्चुअली टीवी स्टेशंस उन्हें ब्रॉडकास्ट सिग्नल टेस्ट करने के लिए यूज किया करते थे। इंजीनियर्स ना उन कलर्स और ऑडियो टोन की मदद से पिक्चर की क्वालिटी, कलर बैलेंस और ट्रांसमिशन जो है उसको चेक किया करते थे। मतलब वो कलरफुल स्क्रीन एक तरह का टेक्निकल हेल्थ चेकअप था। लेकिन बचपन में हमें क्या पता, राइट? हम तो बस इतना जानते थे कलर बार्स अगर आ गए हैं तो कुछ अच्छा स्क्रीन पे आने वाला है, और उस वक्त वेटिंग भी एंटरटेनमेंट का पार्ट था। सो टीवी ऑन किया, प्रोग्राम तुरंत स्टार्ट नहीं होता था और शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट बिल्ड होती थी। जैसे सिनेमा हॉल में पहले लाइट्स डिम हो गई, उस वो वाली फीलिंग, जैसे कैसेट प्ले करने से पहले रिवाइंड की आवाज, एक्सपेक्टेशन का भी अपना ही मजा होता था 90s में। ऑनेस्टली कलर बार्स देखते देखते हम कलर्स भी याद कर गए और कभी कभी तो टीवी के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए पापा भी वही यूज करते थे कि नहीं आज ज्यादा लग रहा है। आज स्ट्रीमिंग एप्स इंस्टेंटली प्ले हो जाते हैं, राइट? नो वेटिंग, नो बिल्डअप, नो कलर बार्स। तब प्रोग्राम से पहले भी प्रोग्राम जैसा एक्साइटमेंट हुआ करता था दोस्त। और ये बातें करते करते जो हम ऐसे गोते खाते रहते हैं ना 90s में, ऐसा लगता है कि जस्ट हमारी जिंदगी का ही कोई रिवाइंड बटन जो है ना वो वापस से दबा दे और हम वापस से उस माहौल में चले जाए। बट कोई नहीं, हमारा मस्ती 90s मिक्स टेप इस शो का कुछ काम ही ऐसा है कि हम अपने इमेजिनेशन में उस दौर से थोड़ा सा घूम कर वापस आ जाते हैं। रियलिटी में भी तो रहना उतना ही है, नहीं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए कुछ 90s वाले गाने सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: दिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: पर्दे उड़ रहे हैं, पर्दे उड़ ही रहे हैं और उड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि वही सीन को अच्छा बना रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूं अंतरा, यहां पर 90s वाली आपके साथ। 90s बॉलीवुड का रोमांस भी कितना कमाल का था ना दोस्त। आजकल लोग रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पर, तब डायरेक्टर्स एक ही चीज दिखा देते थे, बड़े बड़े सफेद पर्दे उड़ रहे हैं और ऑडियंस तुरंत समझ जाती थी कि हां जी यहां प्यार चल रहा है। याद करिए, हीरो और हीरोइन एक बड़े से रूम में, ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक, और अचानक वो जायंट व्हाइट कर्टन हवा में डांस करना शुरू हो जाते हैं। कभी हीरो कर्टन के पीछे, कभी हीरोइन कर्टन के आगे, कभी दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली पर्दे भी उस गाने के सपोर्टिंग एक्टर्स लगते थे। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात भी ये है दैट 90s में बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग स्टूडियो सेट्स पे शूट किया जाता था उनको। नेचुरल लोकेशंस हर बार पॉसिबल नहीं हो पाते थे, तो फिल्म मेकर्स मूवमेंट और विजुअल ब्यूटी क्रिएट करने के लिए लार्ज फ्लोइंग कर्टन्स यूज किया करते थे। पर्दे हवा में मूव करते थे और कैमरा को फ्रेम में जो है डेप्थ और सॉफ्टनेस एट द सेम टाइम मिल जाया करती थी। सिंपल सेट भी ड्रीमी सा लगने लगता था। और फिर इंडस्ट्रियल फैंस का मैजिक तो आपको बताया ही था मैंने। ऑफ कैमरा दो तीन बड़े बड़े फैंस फुल स्पीड पे चला करते थे और ऑन कैमरा रोमांस ही रोमांस। रियल लाइफ में अगर घर में इतनी हवा चल रही होती तो मतलब लोग आंखें बचाते हैं, राइट? लेकिन बॉलीवुड में बाल परफेक्ट, मेकअप परफेक्ट, पर्दे परफेक्ट, गाना तो सुपर परफेक्ट। 90s के फिल्म मेकर्स के पास CGI नहीं था दोस्त, है ना, लेकिन क्रिएटिविटी काफी सारा थी। एक कर्टन, एक फैन, एक मेलोडी एंड पूरा रोमांटिक एटमॉस्फेयर तैयार मेरे दोस्त। इसीलिए आजकल भी 90s के कोई भी लव सॉन्ग्स आप देख लो, इतने ड्रीमी लगते हैं कि क्या ही बताऊं। पहला पहला प्यार है, पहली पहली, पता नहीं अचानक से ये गाना कहां से याद आ गया चलो यही सुन लेते हैं साथ में ऑन रेडियो 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा केजी मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: नाइन्टीज में फन का भी अपना ही तरीका हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं 90s वाली अंतराप के साथ यहाँ पर 90s के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ज्यादा चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी एक रबर बैंड तो कभी एक पेपर प्लेन और कभी स्कूल बुक्स पे लगने वाले ट्रांसपेरेंट कवरिंग प्लास्टिक के बबल्स। वाह वाह, क्या ही याद आ गया बात करते करते। सो नई बुक्स के कवर होकर जब आते थे, ब्राउन पेपर उस पे लग गया, ठीक है, ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लग गया, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हमारी नजर कंटेंट पे नहीं जाती थी, बबल पे जाती थी। और बस फिर क्लास के बीच में, होमवर्क के बीच में या फ्री पीरियड में मिशन शुरू, थम से उसको प्रेस करो, पॉप, और एक और पॉप। फिर पूरा कंसंट्रेशन उसी पे जाता था। टीचर बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हम अपनी अलग ही दुनिया में बबल्स पॉप हो रहे हैं वहां पे, सब सेकेंडरी हो जाया करता था। बबल डिस्ट्रक्शन प्राइमरी, एकदम फोकस वहीं पे। एंड बबल जितना छोटा होता था उसे फोड़ने में उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। याद आया आपको, जैसे कोई सीक्रेट अचीवमेंट हमने अनलॉक कर लिया हो। सो 90s में डिस्ट्रैक्शंस भी कितने सिंपल होते थे। मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो खुद ही लग रहा है ऐसा। आज नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तब एक हवा का छोटा सा बबल डिस्ट्रैक्ट कर दिया करता था। एंड कई बार वो बबल एक्सीडेंटली बन जाता था कवर लगाते वक्त, लेकिन बच्चों के लिए तो वो डिफेक्ट है ही नहीं, बोनस फीचर था। यहाँ जो है कुछ और भी, मतलब साथ साथ में बात कर रही हूँ तो याद आया कि एक बोनस फीचर था कि बुक कवरिंग का पूरा रिचुअल खुद एक इवेंट वैसे भी हुआ करता था 90s में। स्कूल खुलने से पहले घर में न्यूज़पेपर और ब्राउन पेपर, लेबल्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक निकालते थे। पेरेंट्स बुक कवर करते थे और बच्चे साइड में बैठकर बबल्स इंस्पेक्ट करते थे। आज रेडीमेड कवर्स मिल जाते हैं, तब बुक कवरिंग भी स्कूल प्रिपरेशन का ऑफिशियल सीजन हुआ करता था। इसीलिए हम 90s का बचपन इतना स्पेशल लगता है क्योंकि हमारी यादें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है ना उससे। इट्स द टाइम वी हैव स्पेंट विद आर पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक ए क्वालिटी मोमेंट एंड टाइम। एंड हम एंटरटेनमेंट ढूंढते ही नहीं थे, हम एंटरटेनमेंट खुद ही बना लेते थे। एक बबल, एक पेंसिल, एक रूलर, बस काफ़ी है हमारे लिए। ओह गॉड, आज भी बबल्स फोड़ने में बड़े मज़े आते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूं 90s वाली आंत्रा, यहां पर आपके साथ। और भाई 90s में अगर टीवी खराब हो जाता था ना, तो पूरे घर का मूड ऑफ हो जाया करता था, क्योंकि उस वक्त आई थिंक 90s में टीवी सिर्फ एक गैजेट नहीं था, घर का एंटरटेनमेंट मिनिस्टर था वो मिनिस्टर। और जब वो मिनिस्टर स्ट्राइक पे चला जाए, तो तब बुलाए जाते थे टीवी रिपेयर वाले भैया जी। और वो हमारे भैया जी जो है वो अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर आते थे। ना इनके पास होता था लैपटॉप, ना कोई डायग्नोस्टिक सी मशीन, ना कोई फैंसी इक्विपमेंट, बस एक झोला, ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर, और चेहरे पे वो एक्सप्रेशन की हाँ जी चलो मैं देख लेता हूँ। टीवी खराब होते ही एक तो घर वाले ना 20 थ्योरीज जो है वो बना लेते थे कि पिक्चर गई है, साउंड गया है, कलर उल्टा हो गया है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, सब पैनिक मोड पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिपेयर वाले भैया जी आते ही टीवी के साइड पे दो देते थे टाप टाप। पीछे का कवर खोलते थे, थोड़ा सा वायर हिलाते थे, और कभी कभी तो टीवी वापस चल भी पड़ता था। उस मोमेंट पे लगता था कि ये इंजीनियर नहीं, ये कोई जादूगर है। उस वक्त ना 90s के टाइम पे बहुत सारे टीवीज के कंपोनेंट लेवल जो है रिपेयर होते थे, मतलब पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं होता था, टेक्नीशियंस एक्चुअल सर्किट बोर्ड्स पे काम करते थे, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और छोटे कंपोनेंट्स जो है वो चेंज करते थे। इसीलिए एक अच्छा टीवी रिपेयर टेक्नीशियन पूरे एरिया में काफ़ी फेमस हुआ करता था कि वो भाई मेरे घर में, हमारे घर में आया था, उसने तो एक बार में बेंजी ठीक कर दिया, मतलब आप ज़रा बताएंगी, मतलब उसी को बुलाते हैं फिर। और आजकल टीवी खराब हुआ तो सर्विस सेंटर, तब मोहल्ले वाले अंकल या भैया जी, और सबको उनका नाम भी पता होता था कि भाई वो राजू भैया को बुला दो, रफीक भाई को फोन कर दो। पूरा एरिया भी रिकमेंडेशन देता था। 90s का नेबरहुड इतना कैसा कनेक्टेड सा था ना, हर काम के लिए एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट जो है हमेशा फिक्स हुआ करता था। टीवी रिपेयर वाले भैया जी, साइकिल रिपेयर वाले भैया जी, वॉच रिपेयर वाले अंकल, सब अपने अपने सुपर हीरोज, राइट। और जिस दिन टीवी रिपेयर अंकल के हाथ लगते ही स्क्रीन वापस ऑन हो जाती थी, उस दिन लगता था मार्वल का असली ओरिजिन तो यहीं से शुरू हुआ है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। भाई मैं बता रही हूँ, मैजिक ही था हमारे लिए सब कुछ। फिलहाल गाने भी एकदम अमेजिंगली मैजिकल, ओनली ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड
6: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 91518963.

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वापस आ चुके हैं मस्ती 90s मिक्स टेप की गाड़ी को अब बढ़ाते हैं और आगे और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s के बच्चे इंजीनियर्स तो नहीं थे, लेकिन इनोवेशन में किसी से हम कम भी नहीं थे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ पता क्या था? क्रिकेट बॉल पे टेप लगाना। ऑल द बॉयज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? हमने भी गली क्रिकेट खेली है, हमें भी ये पता है। सो नॉर्मल टेनिस बॉल से खेलना एक अलग बात हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन किसी ने इलेक्ट्रिकल टेप निकाल ली, उस दिन मैच का लेवल ना अपग्रेड हो जाया करता था। पूरा ऑपरेशन बड़े सीरियस मोड में होता था। बॉल लाओ, टेप लाओ और फिर केयरफुली उसकी रैपिंग शुरू करो। कोई हाफ बॉल कवर करता था, कोई पूरी बॉल, कोई ब्लैक टेप, कोई रेड टेप, जैसे वर्ल्ड कप के लिए इक्विपमेंट प्रिपेयर हो रहा हो। और फिर अनाउंसमेंट की, आज टेप बॉल से मैच होगा। बस सब बॉलर्स के अंदर वो वकार यूनुस और श्रीनाथ वाले जो है सब एक्टिवेट हो जाते थे, क्योंकि टेप लगते ही हमें लगता था बॉल अब डबल स्पीड से जाएगी। ऑनेस्टली कई बार जाती भी थी। यहाँ एक बात कुछ ऐसी कि टेप बॉल बेसिकली क्रिकेट साउथ एशिया में इतना पॉपुलर हुआ कि इसने अपनी एक अलग क्रिकेट कल्चर क्रिएट कर दी। टेनिस बॉल पे टेप लगाने से बॉल थोड़ी हैवी और स्मूथ जो है वो हो जाती थी, जिससे पेस और स्किड दोनों बढ़ जाते थे। इसी टेप बॉल कल्चर से बहुत से फास्ट बॉलर्स ने अपने रिफ्लेक्सेस और बॉलिंग स्किल्स को डेवलप किया हुआ है। नाउ लेकिन कॉलोनी क्रिकेट में साइंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस का वहां पे रोल होता था। टेप लगते ही बॉलर की रन अप लंबी हो जाती थी, अपील लाउड हो जाती थी और एटीट्यूड इंटरनेशनल लेवल का। सो 90s के बच्चे हर चीज को कस्टमाइज करते थे। साइकिल को मॉडिफाई कर दो, पेंसिल डेकोरेट कर दो, कैसेट को डेकोरेट कर दो, मिक्स टेप बना दो, बॉल को अपग्रेड कर दो, कुछ भी स्टॉक कंडीशन में नहीं चलता था। 90s का बचपन कितना ही क्रिएटिव था यार, क्योंकि हम चीजें सिर्फ यूज नहीं करते थे ना, उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश भी क्या करते थे। सच्ची क्या खूबसूरत से थे 90s के वो दिन। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए वो दिन याद करते करते गाने सुनते हैं।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: वो तो
4: क्यूट है ना?
3: अरे पहलवान है,
4: पर तुमसे प्यार करती है।
3: हो नहीं सकता।
4: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
3: हो नहीं सकता।
4: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
3: ये हो नहीं सकता।
5: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। स्टाइल मारना तो हमें पूरा का पूरा बॉलीवुड ने ही सिखाया है 90s में, दैट इज फॉर श्योर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s बॉलीवुड के हीरोज में एक क्वालिटी जो कॉमन मुझे लगी, उनके पास सुपर पावर्स ऑफिशियली तो नहीं होती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल सुपर हीरो से भी ऊपर वाला होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मूविंग ट्रेन्स पे चढ़ना है ना, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, स्पीड पकड़ रही है, प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा, छोड़ देगा भाई, अगली ट्रेन का वेट करेंगे। लेकिन 90s के हीरो नहीं, वो जी फुल स्पीड में भागेगा, एक हाथ से रेलिंग पकड़ेगा और स्टाइलिश तरीके से ट्रेन में चढ़ जाएगा, जैसे डेली वार्म अप का एक्सरसाइज में वो यही करता हो। ये सीन ऑलमोस्ट हर दूसरी फिल्म 90s में जो है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। कभी हीरो हीरोइन को रोकने जा रहा है, कभी घर से भाग रहा है, कभी विलेन का पीछा कर रहा है, लेकिन ट्रेन जरूर चल रही होती है इसमें। यहाँ कुछ ऐसा भी है कि आजकल ऐसे सीन्स जो है ना उसमें CGI और विजुअल इफेक्ट्स का काफी यूज होता है, लेकिन 90s में बहुत सारे ट्रेन सीक्वेंस प्रैक्टिकली जो है शूट किए जाते थे, प्रोफेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स कंट्रोल्ड ट्रेन स्पीड्स और डिटेल्ड प्लानिंग के साथ। मतलब जो सीन स्क्रीन पे एफर्टलेस लगता था उसके पीछे काफी प्रिपरेशन होती थी। लेकिन बचपन में हमें क्या पता है ना, हम तो बस हीरो को देख के इंप्रेस हो जाते थे और फिर अगले दिन स्कूल में डिस्कशन शुरू की, और ये देखा एकदम लास्ट सेकंड में उसने क्या ट्रेन पकड़ी उसने। बॉलीवुड का लॉजिक ही कमाल का था, राइट? ट्रेन चल रही है ना, हीरो भाग रहा है, बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक चल रहा है, हीरो का हेयर स्टाइल फिर भी परफेक्ट है। साइंस थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पे जरूर हो जाएगा, लेकिन ऑडियंस बड़ी खुश होती थी इससे। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे ना 90s के हीरोज, इतने ज्यादा इसीलिए तो मेमोरेबल लगते थे, वो उन्हें ड्रामेटिक बना देते थे, एकदम सॉलिड वाला। इसीलिए 90s के लोग, उनमें भी ड्रामा कूट कूट के भरा हुआ है कंप्लीटली। अग्री करते हो ना आप, है ना? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बस कुछ देर और बने रहिए, सुन लेते हैं 90s के नगमे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
4: एक्शन कॉमेडी केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट।
5: दिशा पत्नी, जैकलिन फर्नांडिस, शक्ति एंड अक्षय कुमार।
4: From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
6: Welcome to the jungle.
4: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
7: Trailer khatam, paisa hajam.
8: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
1: आई नो, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा ब्रो, करना पड़ेगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा था मस्ती 90s मिक्स टेप। और यहाँ जो है, इट्स ऑलवेज अ खूबसूरत सफ़र। जब जब मैं ये शो करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, कितना सब कुछ हमने याद किया। नहीं, स्कूल के वाटर बॉटल का कैप जो शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में खो जाता था, वो मेलोडी टॉफी जहाँ चॉकलेट सेंटर तक पहुँच कर भी जब हम पहुँचते थे तो ऐसा लगता था अचीवमेंट हो गई हमारी। कोई आइस ट्रे से बर्फ निकालने का ओलंपिक लेवल का टेक्निक टेस्ट हमारा, वो टीवी के कलर बार्स जो प्रोग्राम से पहले एक्साइटमेंट क्रिएट किया करते थे, वो जायंट कर्टन्स जो हवा के साथ रोमांस को भी उड़ा के लेकर जाते थे, वो स्कूल के बुक्स की कवरिंग प्लास्टिक के बबल्स, वो टीवी रिपेयर वाले भैया, वो टेप की हुई बॉल, क्रिकेट की इंजीनियरिंग जहां हर बच्चा इन्वेंटर हुआ करता था। क्या ही बोलूं। 90s में हर चीज़ परफेक्ट नहीं थी, मैं तो यही बोलती हूँ, पर हर चीज़ इंटरेस्टिंग काफ़ी थी। टीवी सिग्नल वीक था पर एक्साइटमेंट स्ट्रॉन्ग थी। आइस ट्रे जो है वो टफ थी, पर कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ही अलग था। टेप बॉल जो है वो इम्परफेक्ट ज़रूर थी, पर मैच वर्ल्ड कप जैसा लगता था। और मूवीज़ लॉजिक कभी कभी हॉलीडे पे ही नहीं, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हॉलीडे पे होता था, लेकिन एंटरटेनमेंट का फुल अटेंडेंस लगता था। शायद इसीलिए आज भी हम 90s को सिर्फ याद नहीं करते हैं, उसको इतना तहे दिल से महसूस करते हैं, क्योंकि वो ज़माना हमें यही सिखाता था, खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी एक बबल फोड़ने में भी मिल जाती है, कभी एक मेलोडी के सेंटर तक पहुंचने में मिल जाती है, कभी एक संडे के टीवी प्रोग्राम में मिल जाती है, तो कभी एक पुराने 90s वाले गाने में ही मिल जाता है। हाय, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद वापस आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
3: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
4: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट से बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: डियर मस्ती दिल से, जी हाँ, ये ऐसा शो है जिसमें ये गाना विच सेज मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, बहुत मायने रखता है ये गाना। क्यों? वेल, अब से लेके 8 बजे तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम क्यों ये गाना राइट इन द बिगिनिंग चलाए हैं आज के दिन में रेडियो मस्ती 24/7 पर। डियर मस्ती दिल से, आइए तो फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के शो की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये शो ऐसा जहां पर आपका नाम तो छुपा रहता है लेकिन आपकी कहानी सिर्फ हम ही नहीं, सब के सब हमारे लिसनर्स सुनते हैं और हमें लिखते हैं कि उनका क्या व्यू है उसके बारे में। यू नो, लाइफ हैज दिस फनी वे ऑफ टीचिंग अस, कभी कभी लोगों के थ्रू, कभी सिचुएशंस के थ्रू और कभी इमोशंस के थ्रू, एंड वी डोंट इवन वॉन्ट टू एडमिट दैट हम कुछ फील कर रहे हैं। आज हम चिट्ठियां खोलेंगे फ्रॉम लिसनर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद फ्रेंडशिप्स या कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस, या कोई स्टूडेंट्स की जिनकी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की चिट्ठियां एंड साथ ही साथ में और भी इमोशंस भरी चिट्ठियां। लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रेंडशिप्स हर्ट कर सकती हैं, पेरेंटिंग डज नॉट कम विद अ हैंडबुक, एंड स्टूडेंट ओहो इतना प्रेशर कि पूछिए मत कितने जनरेशंस फेस कर चुके हैं। रियलिटी फिर भी एक, दैट बिहाइंड एवरी स्माइल, एवरी सोशल मीडिया पोस्ट, एवरी आई एम फाइन, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन जहां पर दिल कुछ और कहना चाहता है। दैट्स व्हाई आवर शो एग्जिस्ट्स, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। सारे जवाब तो शायद हमारे पास नहीं होंगे, बट बिकॉज समटाइम्स हियरिंग अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर वॉइस और सिंपली नोइंग यू नॉट अलोन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो एज ऑलवेज, रियल चिट्ठियां, रियल लोग, शेयर्ड अनोनिमसली, एंड परहैप्स समवेयर इन टुडे स्टोरीज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई मिलेगी, राइट? ये है डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जहां पर जिंदगी के सवाल बहुत ही दिल के पास ऐसी कॉन्वर्सेशंस बन जाते हैं, बट एवरी स्टोरी मैटर्स।
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
1: बस इसी जिंदगानी के नाम ये वाला शो हमारा, सही में रहिएगा हमारे साथ में। जी हाँ, 9151896 द टेलीफोन नंबर जहां भेज सकते हैं अपने व्यूज और अपने विचार और कभी कभी अपनी पर्सनल चिट्ठियां भी। स्टे ट्यून्ड,
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
4: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.
5: मेरे करण अर्जुन आए
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और मैं लौट आया हूँ फिर से। मेरा नाम है समर, लेजेंड्स वाला ऑफ कोर्स, और जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव से, ये है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हम लेजेंड्स में जिस फनकार की बात करने वाले हैं, देखिए मेरा अंदाज जो है कितना बदल गया है, बहक सा गया है। नहीं, वजह यही है कि उनका नाम लेते ही कुछ कुछ होता है। नहीं नहीं, करण जौहर की बात नहीं करने वाले हम आज। हम जिनकी बात करने वाले, ना ना, शाहरुख खान भी नहीं है, काजोल भी नहीं है, रानी मुखर्जी भी नहीं है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनके अनगिनत बेहतरीन गाने हमारी आंखों के सामने से उनका नाम लेते ही गुजरने लगते हैं, कानों में बजने लगते हैं। जैसे

कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, या फिर सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, और भी बहुत हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाह वाह वाह, मतलब इतने गाने हैं और इतने हिट गाने हैं कि अगर मैं सिर्फ इन गानों का नाम भी लूंगा ना तो आज का वक्त पूरा हो जाएगा। तो चलिए, इतने सारे गानों के नाम लेने के बाद मुझे तो यकीन है कि आप पहचाने गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं पहचाने तो रस्म निभा लेता हूं और बता देता हूं कि कौन है आज के हमारे फनकार। जी हां, वो हैं राहुल देव वर्मा।

तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ आर डी बर्मन के बारे में कि इंडस्ट्री के सारे कंपोजर्स एक तरफ और आर डी बर्मन का म्यूजिक एक तरफ, इतना दम था उस कलाकार में। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं के कंपोज किए हुए गाने सुनेंगे और गुनगुनाएंगे। ऑफ कोर्स अगर इन गानों पर आपको मस्ती चढ़े तो मस्त हो जाएगा, झूम लीजिएगा, गा लीजिएगा और लौट कर यहीं आएगा, क्योंकि कहानी अभी शुरू होगी यहीं पर। यह है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं समर, लौटता हूं इन गानों के बाद यहीं पर।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle camp madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
5: हाँ जी जी।
1: 1/2 kg मसूर दाल।
5: जी जी।
1: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
5: जी जी।
1: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
1: क्या जी?
5: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
1: वाजी, क्या बात जी।
5: Order today from GG Mart, your personal grocer.

क्लासिकल सीखा करते थे और वेस्टर्न म्यूजिक का तगड़ा शौक था एक्चुअली ने, तो इंग्लिश गाने भी सुना करते थे। पिताजी थोड़े टाइम बाद मुंबई आ गए थे, एसडी बर्मन साहब, फिल्मों में म्यूजिक देने के सिलसिले में। तो ये कोलकाता में ही अपनी दादी के साथ रहते थे शुरू शुरू में। तबला बजाने का बड़ा शौक था, तो इनकी दादी इन्हें तबला ही कहा करती थी, तबलू कहती थी रादर, तबलू। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इन्हें हम आरडी भी कहते हैं और पंचम भी। तो पंचम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब छोटे थे तो जब ये रोते थे तो इनके मुंह से प सुर निकलता था, यानी पांचवा सुर, जिसे पंचम सुर कहा जाता है। बहुत ऊंचा रोते थे, बहुत ऊंचे सुर में रोते थे। और एक कहानी ये भी है कि अशोक कुमार साहब, जो उस वक्त के बड़े सुपरस्टार थे, वो कभी कभी इनके घर आया जाया करते थे, तो वो इनसे सुर लगाने को बोलते थे कि भाई इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर के बेटे हो, तुम्हें बड़े होकर संगीतकार ही बनना है तो सुर लगाओ। तो आरडी बर्मन सारे गामा पा, इससे आगे सुर नहीं लगा पाते थे, यानी वो प पे ही अटक जाते थे। इसलिए दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने इनका नाम पंचम रख दिया था। बहरहाल सिंगापुर अभी वक्त गाने सुनने का है। इतनी सारी बातें इनके बारे में हो गई, मुझे मालूम है कि आप भी कह रहे होंगे कि तुम चुप हो जाओ यार, गाने सुनने दो। तो ये गाने सुनिए, कहानी तो अभी बाकी है, बल्कि शुरू ही हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहानी में फन बहुत है। इस फनकार की कहानी सुना रहा है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव। बराबर लौट कर आइएगा, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ इन गानों के साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: 3, 2, 1।
2: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज, Singapore's smartest game show, where knowledge wins, and you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ।
4: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आकर इंतजार रहेगा आपके फीडबैक्स का। आज हम संगीत के जादूगर यानी आरडी बर्मन साहब की बात कर रहे हैं। सिंगापुर जनरली 20 साल की उम्र में एक म्यूजिक कंपोजर गाना कंपोज करता है। मतलब एक हिसाब से जो लोग बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं वो इस उम्र तक आते आते कोई गाना कंपोज कर पाते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पंचम दा ने सिर्फ 9 साल की उम्र में एक धुन बना दी थी, 9 साल की उम्र में, और जिसको इनके पिता एसडी बर्मन साहब ने 1956 में आई देवानंद की फिल्म फंटूश में इस्तेमाल भी कर लिया था, अपने बेटे को शाबाशी दी। और वो गाना था ए मेरी टोपी पलट।

क्या बात है। इसके अलावा फिल्म प्यासा का वो गाना सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, ये बचपन में इन्हीं ने कंपोज किया था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। पंचम भी इन हरकतों से सबको दिखाना चाह रहे थे कि वो भी आगे जाकर बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर बनने वाले हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का भी बड़ा शौक था उन्हें, माउथ ऑर्गन बजाया करते थे। एक फिल्म थी देव साहब की 16वां साल, जिसमें एस जी बर्मन साहब का म्यूजिक था और उसका एक गाना था जिसमें माउथ ऑर्गन बजाया था पंचम ने। यू गेस इट राइट, सुनेंगे, सुन लीजिए। अब साहब आर डी बर्मन साहब भी कलकत्ता से मुंबई आ गए और अपने पिताजी को असिस्ट करने लगे। इस दौरान इनकी और जो नए लड़के थे जो म्यूजिक सीखना चाह रहे थे उनसे भी दोस्ती हो गई, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो आगे जाकर बेहद कमाल के म्यूजिक कंपोजर बने, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बनने से पहले ये प्यारेलाल जी के साथ म्यूजिक देने की सोच रहे थे। क्या ये सच है, बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से आज गाने कमाल है, नहीं एंजॉय कीजिए ना। तो इन्हें मस्ती है रेडियो स्टेशन का नाम और यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो 24 घंटे सातों दिन अब आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, वेलकम बैक। आप इस बेहतरीन शो में हैं जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से, और जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, वो पंचम दा की कहानी है। अरे भाई, जिसे सुन रहे हैं मतलब इस वक्त जिसे सुन रहे हैं, जो सुना रहा है ये कहानी, वो है समर। हाय, कैसे हैं आप? मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताने वाला था कि क्या आरडी बर्मन और प्यारे लाल जी की जोड़ी बन सकती थी, क्या ये सच है? जी, ये बात सच है। एक ऐसा वक्त आया था जब आरडी बर्मन और प्यारेलाल साहब एक साथ म्यूजिक देने की सोच रहे थे। मतलब उस वक्त अगर इनकी जोड़ी बनती तो शायद बर्मन प्यारेलाल या प्यारेलाल बर्मन बनती। भाई, दोस्ती तो इनकी गहरी थी ही, दोस्ती तो लक्ष्मी जी से भी थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लक्ष्मी जी से भी, लेकिन इनसे यानी प्यारेलाल जी से कुछ ज्यादा ही थी। और अब तक काफी फिल्मों में पिताजी को वो असिस्ट भी कर चुके थे, तो इन्होंने पिताजी से कहा कि मैं अब फिल्मों में म्यूजिक देना चाहता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट कंपोजर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं और प्यारेलाल दोनों मिलकर म्यूजिक दें, यानी जोड़ी बनाकर। लेकिन शायद एस डी बर्मन साहब को ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम अगर म्यूजिक देना ही चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले ही दो, किसी और के साथ क्यों देते हो? बहरहाल, इन्होंने पिताजी की बात मान ली। बहुत सोचा और फिर लगा कि शायद पिताजी ठीक कह रहे हैं। हालांकि दोस्ती इनकी वैसी रही। आप देखिए फिल्म दोस्ती, जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बना दिया, उसमें आरडी बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया था, तो ये दोस्ती तो बरकरार रही।

यही वाला। आगे बात करेंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें म्यूजिक देने के अलावा उस फिल्म में ऐसा कुछ हुआ कि फिर पंचम दा को एक्टिंग भी करनी पड़ी। कौन सी थी वो फिल्म और कैसी की इन्होंने एक्टिंग, सब कुछ जानने के लिए वापस लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि लेजेंड्स फिर से पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आ गए आप, आइए आइए, स्वागत आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं लौट आया हूँ लेकर लेजेंड्स फिर से। और आज हम बात करें सिंगापुर आर डी बर्मन साहब की, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर आर डी बर्मन। फिल्म इंडस्ट्री में एक बात है कि बड़े बाप की औलाद होने के फायदे तो हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ नुकसान भी हैं। होता यूं है कि लोगों को चिढ़ हो जाती है कि अरे भाई इसका बाप तो बड़ा आर्टिस्ट है तो ये बन जाएगा यार, तो उसको सपोर्ट नहीं करते। मतलब ये तो अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप थोड़ी बनता है, सपोर्ट तो करना पड़ता है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ इस मिथ को तोड़ने वाली, कि इंडस्ट्री में अगर आपके पिताजी कितना भी बड़ा काम कर रहे हैं, कितने भी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उनके नाम से सिर्फ काम मिल सकता है शुरू शुरू में। चलना या नहीं चलना वो आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। तो आर डी बर्मन साहब तो टैलेंटेड थे ही। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, वोदी सन ऑफ द वोदी फादर, पंचम थे ये। बहरहाल 1961 ये वो साल था जिसमें आर डी बर्मन ने पहली बार पूरी फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया, या यूं कहिए कि ये पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने संगीत दिया। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। मशहूर कॉमेडियन महमूद भाई ने इसे प्रोड्यूस किया था, जो एज अ प्रोड्यूसर उनकी भी पहली फिल्म थी। हालांकि वो एस डी बर्मन साहब को लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों में एस डी बर्मन साहब बहुत ज्यादा बिजी थे, उनके पास टाइम ही नहीं था। इसलिए उन्होंने आर डी बर्मन को कहा कि यार तुम ही कंपोज कर दो। लेकिन जब उन्होंने म्यूजिक सुना तो वाह वाह कर उठे और कहा उन्होंने एस डी बर्मन साहब से कि भाई एस डी साहब आपका बेटा आपसे भी आगे जाएगा, देख लीजिएगा आप। तो एस डी बर्मन साहब कुछ बोले तो नहीं, लेकिन गर्व से मुस्कुरा दिए थे। कोई भी बाप ऐसे ही मुस्कुराता है जब उसके बेटे की तारीफ होती है। खैर साहब, फिल्म का म्यूजिक हिट रहा और एक गाना, ओ मत वाली आंखों वाले दिल तेरा हो रहे।

ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद महमूद साहब की एक दूसरी फिल्म आई भूत बंगला, इन्होंने फिर म्यूजिक दिया उसके लिए। मतलब उन्होंने कहा कि अब तुम ही दो, मैं समझ गया हूँ कि तुम दे सकते हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और म्यूजिक हिट भी रहा इसका। अच्छा, इस फिल्म की एक और खास बात है जो पंचम दा को लेकर है, वो ये कि इन्होंने इसमें एक्टिंग भी की। और हुआ यूं कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो महमूद साहब ने इनको कॉल किया कि भाई शूटिंग चल रही है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। तो आर डी बर्मन साहब वहां पहुंच गए। जाते ही महमूद भाई ने कहा कि देखो आपके लिए एक ड्रेस हमने बनाई है, ये पहन लो आप। तो इन्होंने वो पहन ली खुशी खुशी। ये पहनने के लिए, कपड़े बदलने के लिए मेकअप रूम में गए और पहनकर वहीं बैठ गए। इतने में महमूद भाई का छोटा भाई आया पीछे से और पानी की बाल्टी इनके ऊपर डाल दी। पहले तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर महमूद भाई ने कहा कि यार जब भीग गए हो तो वो एक बारिश वाला शॉट है मेरी फिल्म में, उसमें खड़े हो जाओ। तो साहब अब दोस्त की बात तो माननी पड़ेगी भाई, उन्होंने तो इन्हें पहला मौका दिया था, तो वो खड़े हो गए साहब वहां जाकर भीड़ में, शॉट परफेक्ट हो गया। बाद में महमूद भाई ने कहा कि यार ये तो मेरी चाल थी, अब इसी कैरेक्टर का बाकी का रोल भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। और इस तरह से पहली फिल्म बनी पंचम दा की, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, भूत बंगला। इसमें महमूद और पंचम का एक साथ गाना भी है जिसमें दोनों भूतों के साथ डांस भी करते हैं। गाना ये था, बहुत ही कमाल की एक्टिंग की पंचम दा ने। मैं तो सोचता हूँ कि अगर पंचम दा एक्टिंग भी करते तो वहां भी झंडे गाड़ देते, कमाल की कॉमेडियन। आपने अगर भूत बंगला नहीं देखी है तो ये जो भूत बंगला वाला शॉट है ना, जिसमें महमूद और आर डी बर्मन साहब एक भूत बंगले में, एक हवेली में जाते हैं, वो इतना कमाल का है कि आपको महमूद के स्क्रीन पर होने के बावजूद भी आर डी बर्मन की बॉडी लैंग्वेज हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। तो देखिएगा, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। फिलहाल तो मेरे पास और भी बहुत सारे किस्से हैं जिन्हें सुनाने के लिए मैं लौटूंगा। यहीं पर आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart karo, check out karo, or grocery at your doorstep.
1: Vaji, kya baji?
0: Order today from GG Mart, your personal grocer.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ, ओनली ऑन रेडियो मजी 24/7 लाइव। अब 24 घंटे 7 दिन आपके साथ। आज के लेजेंड हैं पंचम यानी आरडी बर्मन। पंचम दा ने जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा काम किया है उनमें से एक हैं किशोर कुमार और आशा जी। आशा जी के साथ दोनों ने फिर शादी कर ली थी, कमाल की जोड़ी थी इन दोनों की। राजेश खन्ना का जो दौर था ना, जिसमें उन्होंने एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, उनमें ज्यादातर फिल्मों में आरडी बर्मन का ही कंपोज किया हुआ म्यूजिक था, जैसे कि अमर प्रेम, कटी पतंग, आपकी कसम, आराधना के भी कुछ गाने पंचम दा ने कंपोज किए थे। इसलिए कि एसडी बर्मन साहब की तबीयत उन दिनों कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था तो नाम म्यूजिक के तौर पर, म्यूजिशियन के तौर पर एसडी बर्मन साहब को याद है उसमें। लेकिन हकीकत यह है कि एसडी बर्मन साहब की जगह आरडी बर्मन ने बहुत सारे गानों को कंपोज किया था उस फिल्म के भी। अच्छा, एक आदमी के साथ इनकी ट्यूनिंग कुछ ज्यादा ही मजेदार थी और काफी काम भी किया दोनों ने एक साथ, और वो जानते हैं कौन है? वो हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब ने इनके साथ एक से बढ़कर एक गाने दिए। पहली बार इन्होंने एक साथ फिल्म परिचय में काम किया, जिसका वो गाना है ना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, आज भी सुपरहिट है। पंचम दा एक दिन सुबह सुबह नहा रहे थे, तब इसकी धुन इनके दिमाग में आई और उस धुन से इन्होंने ये गाना बना दिया। पंचम दा की बात ही अलग है, वो अपने गानों के साथ, अपने म्यूजिक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंटल थे। वो किसी भी चीज से और कभी भी और कहीं भी म्यूजिक बना लेते थे। हद तो तब हो गई जब इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना सत्ते पे सत्ता, उसके एक सीन में गले से जैसे गरारे करते ना वैसा म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक। जब बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा था तो किसी को बैठा दिया, पानी की बोतल दी और कहा कि यार गरारे करो, और उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अमिताभ बच्चन जो नेगेटिव शेड में है इस फिल्म में, जब भी उनका कैरेक्टर आता है तो ये उनका सिग्नेचर ट्यून था उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का। तो कितना एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपने म्यूजिक के साथ, आप समझ सकते हैं। और एक और किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इन गानों के बाद। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आरडी की कहानी, समर की जुबानी।

0: का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: Singapore, prepare for impact.
6: 3, 2, 1.
7: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
8: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
9: वेलकम बैक। आप आ गए तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम ही नहीं चलता कि आप गए और आए, मतलब कहीं जाते नहीं आप। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो छोटा सा गानों का ब्रेक है, इसमें मैं भी इधर उधर चला जाऊं, एक आध कॉफी पी लूं। लेकिन गाने इतने अच्छे हैं कि मैं कहीं छोड़कर जा ही नहीं पा रहा हूँ। आज रेडियो मसी 24/7 लाइव बराबर है समर के साथ। लेजेंड्स फिर से में आज पंचम की कहानी सुन रहे हैं आप समर से। एक इंटरव्यू में पंचम दा ने कहा था कि गुलजार साहब और मेरा कभी कभी झगड़ा हो जाता था, मतलब दोस्ती वाला झगड़ा। एक बार की बात है, एक गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। अब इसमें एक मुखड़ा गुलजार साहब ने लिख दिया, लेकिन वो ट्यून में, मतलब मीटर में नहीं आ रहा था। तो पंचम दा ने कहा, यार ये गाना लिखा है, ये मीटर में बैठ ही नहीं रहा है, थोड़ा चेंज करो इसे। गुलजार साहब बोले, यार इतनी मुश्किल से तो लिखा है, कोशिश करो आ जाएगा। पंचम दा ने कहा, ठीक है मैं बनाता हूँ, आप जाइए घर। वो चले गए। इन्होंने इधर मुखड़े की धुन बना दी और शाम को उनको फोन किया।
10: मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर है, तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। अब वो फंसता है, अभी तुमको मीटर में, करेक्ट मीटर में लिखना पड़ेगा।
9: अब भाई उधर से थोड़ी देर बाद गुलजार साहब ने फोन किया कि यार इस धुन पर तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। तो सिंगापुर इस तरह से दोनों के बीच कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन ट्यूनिंग बहुत कमाल की थी और एक दूसरे के लिए ओपन थे ये। जो ठीक लग रहा है वो ठीक लग रहा है, जो नहीं लग रहा है वो एक दूसरे से कह देते थे। तो इस तरह से इन्होंने साथ साथ काम किया। और क्या कमाल का गाना है वो, तेरे बिना जिंदगी। सुनेंगे? चलिए सुनवा देता हूँ आपको मैं।

लेकिन ये तो बता दूं कि इन्होंने साथ साथ कहां काम किया। आंधी फिल्म में, मासूम में, इज्जत में, हर फिल्म का एक एक गाना अनमोल है, मानते हैं कि नहीं। तो चलिए इन्हीं फिल्मों से कुछ गाने आपकी नजर कर रहे हैं हम रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। आप बने रहिएगा समर के साथ, कहानी अभी बाकी है। कहानी किसकी? आर डी बर्मन की। कीप लिसनिंग।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए। अच्छा सिंगापुर, ये तो बताइए कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। आज आरडी बर्मन यानी पंचम दा की बातें हो रही है। पंचम दा के साथ जिस भी डायरेक्टर ने काम किया है बाद में, या फिर यूं कहूं कि ज्यादातर फिर उन्हीं के साथ काम किया, पहली चॉइस तो वही होते थे। यानी हाल ऐसा था कि आधी फिल्मों का म्यूजिक पंचम दे रहे थे उस जमाने में, और आधी का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। यानी यहाँ पर असरानी वाला वो शोले का डायलॉग फिट बैठता है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो जो बाकी के म्यूजिक कंपोजर्स बचते थे बाकी फिल्मों का म्यूजिक वो दे दिया करते थे। ये रुतबा था पंचम का। वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शायद ये जोड़ी नहीं बनती अगर एसडी बर्मन साहब की बात नहीं मानते आरडी बर्मन। तो फिल्म दोस्ती में पंचम दा ने इनके लिए माउथ ऑर्गन भी बजाया था। बहरहाल एक फिल्म आई 1980 में शान, जिसका म्यूजिक पंचम दा ने दिया, और इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर के लिए वो नॉमिनेट भी हुए। तो इस फिल्म में गाना है यम्मा यम्मा, ये गाना रफी साहब और पंचम दा ने मिलकर गाया था अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के लिए। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे छोटा सा किस्सा है। हुआ यूं कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तब पंचम दा का गला खराब हो गया था, तो पंचम दा ने रफी साहब से कहा कि देखो आज ये गाना रिकॉर्ड नहीं होगा, मेरा गला खराब है। रफी साहब ने कहा कोई बात नहीं, आज सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाकी कल फाइनल रिकॉर्ड कर लेंगे, जब गला ठीक हो जाएगा तब डब कर लेंगे। तो बोले चलो ठीक है साहब, गाना रिकॉर्ड हो गया। लेकिन सिंगापुर कुछ दिनों के बाद ही रफी साहब का देहांत हो गया, और फिर ये गाना डब ही नहीं हो पाया, और फिर उसी गाने को फिल्म में इस्तेमाल किया गया, और वो गाना एक यूनिक गाना बन गया जो पंचम दा के गाने का एक स्टाइल बन गया।
2: यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा जो खूबसूरत समा यम्मा यम्मा,
1: है ना मजेदार। सिंगापुर ये जिंदगी है, और जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड से भी गुजरना पड़ता है जो काफी कठिन होते हैं, और वो कहते हैं ना मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो इस कहावत का उदाहरण इस बात के अलावा और क्या हो सकता है? खो गए ना मेरी बातों में? खैर अभी सुनिए ये नगमे, और उसके बाद आपसे पंचम दा की कुछ और बातें करेंगे रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ही। ये सिंगापुर का फेवरेट रेडियो स्टेशन, कीप लिसनिंग कीप एंजॉयिंग, मस्ती करते रहिए जोश में रहिए।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। From laugh out loud moments to larger than life jungle ka madness, this entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hajam.
5: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
6: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
7: टाइम टू रेज द बार।
8: रम्मा
7: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं आप, क्योंकि मैं भी लौट कर आया हूँ फिर से। मेरा नाम है समर। वैसे तो सिंगापुर आरडी बर्मन साहब के बारे में बहुत कुछ है। मैंने कहा था ना कि अगर मैं इनके गानों का मुखड़ा भी सुनाऊंगा ना आपको खुद, मतलब सिर्फ बोलकर, तो भी वक्त निकल जाएगा। तो इतना कुछ है पंचम दा के बारे में। पंचम दा ने दो शादियां की थी। इनकी पहली शादी हुई थी 1966 में दार्जिलिंग में रहने वाली इनकी फैन रीटा पटेल से। बहरहाल ज्यादा टाइम तक ये शादी चली नहीं। 1971 में इनका तलाक हो गया और 1980 में इन्होंने दूसरी शादी की मशहूर सिंगर आशा भोंसले जी से, जो उनकी भी दूसरी शादी थी। अच्छा, इन दोनों को जो पहली सफलता मिली थी ना, वो थी तीसरी मंजिल में। इस फिल्म का वो गाना जो आज भी हर किसी की जुबान पर है, या यूं कहूं कि शम्मी कपूर साहब का नाम लेते ही ये गाना जुबान पर आ जाता है, वो ये।

बात है कि एक गाना है इस फिल्म में, महबूबा ओ महबूबा। अब ये गाना जब शुरू होता है तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। ये साउंड एक खाली बोतल से निकाला गया, मतलब जब आप खाली बोतल में फूंक देंगे तो ये साउंड, इस टाइप का साउंड निकलेगा। ये भी टैलेंट था। मैंने कहा ना, बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपनी म्यूजिक के साथ। ऐसे ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी फिल्मों में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।

मतलब ये कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, लेकिन साउंड है और ये साउंड है तो वो उनके लिए है। उसको रिदम मिलाने का काम उनका था। इससे पहले और इसके बाद भी हिंदी फिल्मों में इतने एक्सपेरिमेंट किसी कंपोजर ने नहीं किए। वो गाना आपको याद है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अब इसमें कांच के ग्लास पर चम्मच से साउंड निकाला उन्होंने। भरपूर टैलेंट। एक बार मुझे याद है आशा जी बता रही थी एक इंटरव्यू में कि एक बार उन्हें बारिश की बूंदों की आवाज अपने गाने में यूज करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने पूरी रात अपनी बैल्कनी में माइक के साथ बिताई। अलग अलग तरह से अलग अलग नोट्स पर उन बारिश की बूंदों की आवाज को वो रिकॉर्ड करते रहे। ये होता है पैशन, और ये पैशन ही बनाता है आपको लेजेंड। और जब आप लेजेंड बन जाते हैं तो उनकी कहानी सुनाता है यहाँ पर समर रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। और आज पंचम की कहानी आप सुन रहे हैं। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग। इन गानों के बाद फिर मिलता हूँ आपसे।

0: Are you ready?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं मुझे यानी समर को रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से में। और आज मैंने आपको आर डी बर्मन साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से और उनके कुछ बेमिसाल गीत सुनवाए। सिंगापुर हर फादर की तमन्ना होती है कि वो एक दिन अपने बेटे के अच्छे कामों की वजह से या अपने बेटे के नाम से जाना जाए। एस डी बर्मन जो पंचमदा के फादर थे, वो रोज सुबह घूमने जाया करते थे और जब घूमकर वापस आते थे तो पंचमदा को डांटते थे कि अभी तक सो रहा है, देख कितना मोटा हो गया। तो पंचमदा सोचते थे कि अब क्या बोलें, बाप है, बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन एक दिन गजब हो गया, बर्मन साहब आए और पंचमदा से बोले, बेटा पंचम तूने तो कमाल कर दिया रे। पंचमदा ने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कमाल कर दिया। बोले तू आजकल अच्छा काम कर रहा है। पंचमदा ने पूछा, क्या हुआ पापा? तो बर्मनदा बोले, आज मैं घूमने गया तो वैसे तो रोज सभी यही बोलते हैं, अरे देखो एस डी बर्मन जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ लड़कियों ने मुझे देखकर कहा, अरे देखो आर डी बर्मन के फादर जा रहे हैं। ये सुनकर बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब बर्मनदा ने पंचमदा को खूब आशीर्वाद दिया। क्या बात है। तो सिंगापुर आज का लेजेंड्स फिर से यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है और जाते जाते बस मैं वही कहूंगा आपसे जो हमेशा कहता हूँ, कुछ वादे करना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप इन वादों को निभाएं, तो कीजिए ये वादा और निभाइएगा इसे। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाएंगे, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव। अभी दीजिए इजाजत। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, ये ऐसा शो है जिसमें ये गाना विच सेज मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, बहुत मायने रखता है ये गाना। क्यों? वेल, अब से लेके 8 बजे तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम क्यों ये गाना राइट इन द बिगिनिंग चलाए हैं आज के दिन में रेडियो मस्ती 24/7 पर। डियर मस्ती दिल से। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के शो की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये शो ऐसा जहां पर आपका नाम तो छुपा रहता है लेकिन आपकी कहानी सिर्फ हम ही नहीं सब के सब हमारे लिसनर्स सुनते हैं और हमें लिखते हैं कि उनका क्या व्यू है उसके बारे में। यू नो, लाइफ हैज दिस फनी वे ऑफ टीचिंग अस, कभी कभी लोगों के थ्रू, कभी सिचुएशंस के थ्रू और कभी इमोशंस के थ्रू, एंड वी डोंट इवन वॉन्ट टू एडमिट दैट हम कुछ फील कर रहे हैं। आज हम चिट्ठियां खोलेंगे फ्रॉम लिसनर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद फ्रेंडशिप्स या कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस, या कोई स्टूडेंट्स की जिनकी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की चिट्ठियां एंड साथ ही साथ में और भी इमोशंस भरी चिट्ठियां। लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रेंडशिप्स हर्ट कर सकती हैं, पेरेंटिंग डज नॉट कम विद अ हैंडबुक, एंड स्टूडेंट ओहो इतना प्रेशर कि पूछिए मत कितने जनरेशंस फेस कर चुके हैं। रियलिटी फिर भी एक, दैट बिहाइंड एवरी स्माइल, एवरी सोशल मीडिया पोस्ट, एवरी आई एम फाइन, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन जहां पर दिल कुछ और कहना चाहता है। दैट्स व्हाई आवर शो एग्जिस्ट्स, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। सारे जवाब तो शायद हमारे पास नहीं होंगे, बट बिकॉज समटाइम्स हियरिंग अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर वॉइस और सिंपली नोइंग यू नॉट अलोन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो एज ऑलवेज, रियल चिट्ठियां, रियल लोग, शेयर्ड अनोनिमसली, एंड परहैप्स समवेयर इन टुडेज स्टोरीज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई मिलेगी, राइट? ये है डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जहां पर जिंदगी के सवाल बहुत ही दिल के पास ऐसी कॉन्वर्सेशंस बन जाते हैं, बट एवरी स्टोरी मैटर्स।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: बस इसी जिंदगानी के नाम ये वाला शो हमारा, सही में रहिएगा हमारे साथ में। जी हाँ, 9151896 द टेलीफोन नंबर जहां भेज सकते हैं अपने व्यूज और अपने विचार और कभी कभी अपनी पर्सनल चिट्ठियां भी। स्टे ट्यून्ड।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
0: एक्साइटेड
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 915189 63.

दिल धड़कने का भी कोई बहाना चाहिए क्या किसी को? रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज डियर मस्ती, दिल से डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो चलिए, आज हमारी टीम ने कहा कि भाई रेणुका, आप ही शो शुरू कीजिए। तो मुझे लिखी हुई ये चिट्ठी, वेल, जो हमेशा ऐसी जो चिट्ठियां होती है ना, वो दिल को वाकई बहुत ज्यादा क्लोजली छू जाती हैं। सो इट इज रिटन टू मी बाय सन। उन्होंने कहा है, आई एम राइटिंग टू यू रेणुका विद अ हैवी हार्ट बिकॉज आई फील कॉट बिटवीन लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रियलिटी। मेरी माँ, जो हमेशा से बहुत ही इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट औरत रही है, इवन आफ्टर माई फादर पास्ड अवे शी इंसिस्टेड ऑन लिविंग ऑन हर ओन। मेरा भाई और मैं बाहर रहते हैं सिंगापुर में फॉर मेनी ईयर्स, बट वी हैव ऑलवेज ट्राइड आर बेस्ट टू बी देयर फॉर हर। हम हमेशा रोज उनको फोन करते हैं, विजिट करते हैं रेगुलरली, सपोर्ट हर फाइनेंशियली, मेक आर सेल्व अवेलेबल वेर एवर वेन एवर शी नीड्स अस। एक रीजन शी रिफ्यूज टू मूव अब्रॉड इज बिकॉज ऑफ हर हेल्थ, क्योंकि उनकी मल्टीपल मेडिकल कंडीशन हैं और वो बहुत अटैच्ड हैं अपनी डॉक्टर्स के साथ में। सो हमने बहुत बार उन्हें कहा है हमारे साथ रहो, बट वो हमेशा मना कर देती हैं। लेकिन लेटली उनकी जो हेल्थ है बहुत डिटीरियोरेट कर रही है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक, माय सन्स आर लिविंग ओवरसीज व्हाइल आई एम स्ट्रगलिंग हियर अलोन। The thing is, she never says this about her daughter. She comes from a very traditional mindset, jahan par daughters are not expected to look after parents, but sons are. So the guilt lands squarely on us. What hurts is that it feels as though all the support we provided over the years is being forgotten because we are not physically there every day. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बट आई कैनॉट सिंपली रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड मूव बैक। माई ब्रदर कांट ईदर। हमारी फैमिलीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हैं और कमिटमेंट्स हैं। वी आर नो लॉन्गर यंग आरसेल्व्स। कैसे डील करें इस गिल्ट के साथ में, एंड हाउ डू वी हेल्प अ पेरेंट हु रिफ्यूजेस द सॉल्यूशंस वी ऑफर बट इज अनहैप्पी विद द सिचुएशन शी हैज चोजन हरसेल्फ। पता है क्या, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है इससे पहले कि हम वापस आके आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात करें। आई एम ब्रिंगिंग अप अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक विच आई पर्सनली लव एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट। आप ये सुनिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और मैं वापस आती हूँ बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जीजी मार्ट ऑनलाइन।

वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज की पहली चिट्ठी के बारे में, जहां पर एक बेटे ने हमको ये लिखा है कि उनकी माँ ने जिंदगी में चूज किया है टू स्टे सेपरेटली ऑन हर ओन, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है शी इज बीइंग सार्केस्टिक अबाउट मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते और मैं अलग रहती हूँ डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव बीन आस्किंग हर टू लिव विद देम फॉर मेनी ईयर्स। डियर मस्ती दिल से, जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ पर आप ही की बातें हम करते हैं। परेशानियाँ हो, खुशियाँ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें लिख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स वी ट्राई अलोंग विद आवर टीम ऑफ काउंसलर्स टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस और एटलीस्ट अ डायरेक्शन एज वी मूव अहेड। डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो देखिए, ये अनजाना इंसान आपको थोड़ी सी डायरेक्शन देना चाहता है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी जो है ना, बहुत से ऐसे बच्चों के दिलों को जाके लगी है हु लिव ओवरसीज स्ट्रगल विद बट वेरी फ्यू टॉक अबाउट दिस ओपनली। गिल्ट जो है ना इज द प्राइस वी पे फॉर लविंग समवन वी कैनॉट बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर। बट चलिए फैक्ट्स देखते हैं। आप और आपके भाई जो हैं एब्सेंट सन्स नहीं हैं। आप रोज फोन करते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, यू सपोर्ट फाइनेंशियली इमोशनली। इनफैक्ट कई बार आपने ये भी कहा है कि हमारे साथ आके रहो। दीज आर एक्शंस ओनली ऑफ केयरिंग चिल्ड्रन।

What has changed is not necessarily आपकी commitment, लेकिन आपकी मम्मी की जो stage of life है ना, वो बदल गई है. जैसे जैसे लोग थोड़े से उम्र में बड़े होते हैं, वैसे ही health जब थोड़ी decline करना शुरू करती है, जो एक anxiety होता है, fear होता है, वो बढ़ जाता है. The fear of illness, the fear of dependency, the fear of loneliness, the fear of losing control. And sometimes, ऐसे जो fears होते हैं ना, they come out of disappointment, जो कि direct किए जाते हैं towards the people they love the most. सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि आपकी मम्मी दो चीजें चाहती हैं. दैट मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज एक तो वो अपने देश में रहना चाहती हैं, अपने घर में, अपने मेडिकल सिस्टम में जिसको वो जानती हैं, फेमिलियर हैं. दूसरी बात, वो चाहती हैं कि उनके बेटे उनके साथ रहें. लाइफ डजंट ऑलवेज अलाउ अस टू हैव बोथ, राइट? सो सारे के सारे जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं, दे गेट ट्रैप्ड इन सच सिचुएशंस, जैसे आप और हम. They keep trying to solve an important, impossible equation, और फिर अपने आप को blame करते हैं. सबसे पहले stop measuring your love only by your physical presence. Presence जरूर matter करती है, but consistency, care, effort और support, वो matters ज्यादा करता है. Perhaps यही time है जब आप थोड़ा सा support network उनके around, trusted relatives हैं, neighbors हैं, community groups हैं, companions हैं, medical coordinators हैं, या शायद regular visitors भी. आपको replace तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ बातों में उनको कुछ ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं. और हाँ, बी जेंटल विद yourself, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन abandoning अ पेरेंट एंड नॉट being एबल टू लिव इन टू कंट्रीज एट द सेम टाइम. यू कैन बी अ लविंग सन without sacrificing योर entire लाइफ, ओके? Sometimes सबसे मुश्किल चीज़ adulthood की पता है क्या होती है? Accepting that love alone cannot solve every problem. चलिए, यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा गाना चलाते हैं कि आप इमोशनल भी होंगे, बट एट द सेम टाइम मेरी बात भी समझेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दूसरों की आदतें ना पसंद करना शायद नॉर्मल हो सकता है, लेकिन खुद की आदतें ना पसंद करना कुछ तो अलग है। बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड आज मेरे हाथों में जो खत है वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि खुद की कमियों को बता रहा है। हाँ जी, जिन्होंने ये खत भेजा है उसमें लिखा है कि हाय डियर मस्ती, मेरे संग एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बढ़ती जा रही है, और ये आज की नहीं है, जब से मैं छोटी हूँ तब से ये मेरे साथ हो रहा है कि मैं खुद से ना सही, मैं दूसरों की अच्छी चीजें देखकर, उनकी अच्छी आदतें देखकर, या उनके पास कुछ बहुत ज्यादा है मुझसे ये देखकर जेलसी फील करती हूँ। और मुझे ये पता भी है कि मैं ये थोड़ा गलत फील कर रही हूँ, बट अब ये क्या करूं, आदत बन चुकी है। आदत तो बन चुकी है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उनसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या आदतें बदलती नहीं है? आदत है, कोई सिंगापुर गवर्नमेंट का रूल नहीं है जिसे आप फॉलो करें ही करें। हाँ, चलिए जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली जब आपको अपनी कमियां धीरे धीरे पता चलने लगे पर्सनली प्रोफेशनली, हाँ आई नो सबसे सिंपल चीज ही ना सबसे डिफिकल्ट होती है फॉलो करना, तो आप अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए धीरे धीरे जबरदस्ती बेमन से ऐसी थिंकिंग से ओवरकम कीजिए। जैसे ही आपको ये ख्याल आने लगे ना कि आप किसी की बेटर चीज देखकर जेलसी फील कर रहे हो, उस वक्त खुद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, अपने संग थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे और इस थॉट को तुरंत इरेज कर दीजिए। बाय द टाइम आप 6 महीने साल भर इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो सब कॉन्शियस माइंड में भी ये बातें बैठने लगेंगी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, मानो तो ठीक है, ना मानो तो कुछ नहीं बदल सकता। अब आपके हाथ

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: पता है, आजकल मुझे लगता है कि किसी भी फीलिंग को वैसे का वैसा एक्नॉलेज कर लेना विदाउट जजिंग इट बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एक चीज है। थोड़ी देर पहले नुपुर के पास जो लेटर आया था उसमें से आई थिंक दैट वॉज माई पर्सनल टेक अवे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पहले अपनी फीलिंग से ही लड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बुरा लगना चाहिए, नहीं नहीं मैं ऐसा फील नहीं कर सकती। अरे भाई, फील तो हो ही रहा है ना पहले उसे तो मान लीजिए। वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। Yes, हम वो रेडियो पे बैठे हुए स्ट्रेंजर्स हैं जो आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। मैं हूँ अंतरा और चलिए बढ़ते हैं मेरी इस चिट्ठी की ओर। ये कुछ ऐसा कहते हैं कि डियर मस्ती, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास गया। मैंने उसकी बात भी सुनी और उसे समझाया कि आज वो जिस सिचुएशन में है उसकी अपनी गलतियां भी उसमें काफी सारी हैं। लेकिन वो मुझसे नाराज हो गया, कहने लगा ज्ञान मत दे। सच बताऊं, अब लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे लगता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी थी। आप अपने दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप उसकी हेल्प करना चाहते थे, राइट? लेकिन कभी कभी इंटेंशन और टाइमिंग, ये दोनों ना बड़ी अलग सी चीजें होती है, और यहां शायद थोड़ा सा टाइमिंग आपका मिस हो गया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मुझे उतनी ही ध्यान से सुने और खुले दिल से सुने जितना ध्यान से मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा है, ठीक है? साथ देने के समय ज्ञान नहीं देना चाहिए। डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। अब इस लाइन के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या एग्जाम खराब गया है या जॉब चली गई है, उस वक्त उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, या कोई जो ये कहे कि ठीक है जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रीदर, सांस ले ले पहले। कई बार जब इंसान इमोशनल पेन में होता है ना, उसका दिमाग ऑलरेडी उसकी गलतियां रिपीट मोड पे चला रहा होता है। उसे पता होता है कि उसने क्या गलत किया है। उस मोमेंट में उसे लेक्चर नहीं, कनेक्शन चाहिए होता है, सुनने वाले दो कान चाहिए होते हैं, वैलिडेशन चाहिए होता है। ये नहीं कि हम सच कभी भी ना बोले, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन पहले सपोर्ट करें, फिर पर्सपेक्टिव और उसके बाद एडवाइस, इसी ऑर्डर में, राइट? एक बात और, आपके दोस्त शायद आपसे नाराज नहीं थे, शायद वो उस सिचुएशन से काफी हर्ट थे और उस हर्ट का रिएक्शन आप पर आ गया। तो प्लीज, इस इंसिडेंट से ये कंक्लूजन मुझे नहीं लगता आपको ये निकालना चाहिए कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई का जमाना आज भी है, बस कभी कभी लोगों को एडवाइस से पहले एक जादू की झप्पी की जरूरत होती है। Yes, एक लिसनर, एक दोस्त जो बस उनके साथ बैठ जाए। तो मुझे लगता है आप एक अच्छे दोस्त हो, बस अगली बार जब कोई तकलीफ में हो ना, पहले उसका हाथ पकड़िएगा, उसके बाद उसे रास्ता दिखाइएगा। Hope this helps, dear listener. यह dear musti दिल से, and I think it's a दोस्ती वाला गाना I love, goes out to you. Enjoy.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूँ अंतरा, और चलिए यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अपनी अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ चले। चलिए, डियर मस्ती, आई डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग माय साइंस टीचर टीचर्स इन क्लास। माय पेरेंट्स थिंक आई डोंट वर्क हार्ड इनफ, एंड व्हेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दे से आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस। व्हाट शुड आई डू? ओके, सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस लेटर में दो फ्रस्ट्रेशन है, पहली साइंस से, दूसरी उस फीलिंग से कि मेरी बात कोई समझ नहीं रहा। एंड एक्चुअली दोनों ही काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं देखा जाए तो। अब जरा एक मिनट के लिए हम लोग ना आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखते हैं। मोस्ट पेरेंट्स जब मार्क्स गिरते देखते हैं ना, या बच्चा स्ट्रगल करता हुआ उनको दिखाई देता है, तो उनका दिमाग सीधा एक ही कंक्लूजन पे पहुंचता है कि शायद मेहनत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी टेंशन होती है, वो फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं आपके, और कई बार उनकी वरी एडवाइस या डांट के फॉर्म में बाहर आती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पेरेंट्स गलत है, लेकिन ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप गलत हो सकता है आप सच में मेहनत कर रहे हो और फिर भी समझ नहीं आ रहा हो। एंड बिलीव मी, ये काफी कॉमन चीज है। हर स्टूडेंट का जो है ना, एक तो लर्निंग स्टाइल काफी डिफरेंट होता है। कुछ लोग क्लास में समझ जाते हैं, कुछ लोग वीडियोस देखकर, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ। अब सवाल ये है कि क्या करें। सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल स्टेप, क्लास में या क्लास के बाद अपने साइंस टीचर के पास जाइए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे इस चैप्टर में ये समझ में नहीं आता। इट्स लाइक अ होल जेनरिक यूनिवर्स आप उनको थमा रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम पूरे सब्जेक्ट में नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स में होती है। दूसरी बात, खुद से भी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, लाइक go on YouTube videos, watch them, try to understand those concepts there. Notes hain, school ke resources hain, library hain, jitna ho sakta hai na explore kijiye. Ab main ye isliye nahi keh rahi ki aap prove karo ki aap sach mein sabko dikha do mehnat kar rahe ho. Main ye isliye keh rahi hu kyunki confidence ke sath baat karna aasan ho jata hai jab aap jante ho ki aapne effort dala hai. Aur phir agar phir bhi प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपने पेरेंट्स के पास जाइए, लेकिन गुस्से में नहीं और तमतमाते हुए रिबेल मोड पे नहीं, और उन्हें कहिए कि मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये मेरे डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट के, या तो आप मुझे ये समझा दीजिए या फिर हमें मिलकर कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा तो मैं बेटर कैसे करूँगा या करूँगी। हो सकता है सोल्यूशन ट्यूटर हो सकता है एक्स्ट्रा हेल्प हो सकता है सिर्फ एक बेटर स्टडी मेथड हो, लेकिन सोल्यूशन तभी निकलेगा जब प्रॉब्लम को मिलकर देखा जाएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि हेल्प मांगना ना वीकनेस नहीं होती है, एक्चुअली हेल्प मांगना अक्सर लर्निंग का पहला स्टेप होता है, एंड गुस्से से बात बिगड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन समझाने से कई बार वो लोग भी समझ जाते हैं जो पहले सुन ही नहीं रहे थे। तो गिव इट अ ट्राई माय डियर लिसनर, मुझे लगता है आप जितना सोच रहे हो उससे कई ज्यादा आप केपेबल हो, बस शायद आपको सही सपोर्ट और सही स्ट्रेटजी की जरूरत है। होप दिस हेल्प्स। ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: Singapore, bored ho? Game khelni hai? Challenge accept karoge? Excited?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

अच्छा ठीक है, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हम बड़े क्यों नहीं? क्यों ना अपने मन की सच्ची बातें हमें भेज दीजिए, आपके सवालों के जवाब शायद हम दे दें। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड एक और कोशिश करती हूँ। किसी का सवाल लेटर के थ्रू मेरे हाथों तक पहुंच चुका है और उस लेटर में पता है क्या लिखा हुआ है कि मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। मतलब जो काम मैं कर रहा होता हूँ उसके अलावा सारे कामों में मेरा ध्यान होता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मैं हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। ओके ठीक है, सो ये कन्फेशन होना भी बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। यू नो व्हाट, मुझे इससे एक बात याद आई। मैं भी एक टाइम पे ना लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, गलत तरह से नहीं, बस डिस्ट्रैक्टेड थी। जो मेरे गोल्स थे वो शायद मैं महीने की पहली तारीख में लिख तो लेती थी पर उन्हें पूरे महीने या पूरे साल फॉलो नहीं कर पाती थी। तो मैंने पता क्या किया, बहुत बेसिक चीज, बहुत बेसिक, एंड दैट इज मेडिटेशन। हाँ जी, अपने माइंड को ट्रेंड करने का और काम करने का सबसे बेटर तरीका, हम जिसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, राइट? सो शुरुआत में शायद 30-40 days मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन बाय द टाइम उस मेडिटेशन से मेरा जो माइंड है वो काम हो गया और मैं एक अच्छी डिसीजन मेकर हो गई। डिस्ट्रैक्शन तो छोड़िए, जो मैंने सोच लिया है ना वो मैंने सोच लिया है। सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना है, रात में टाइमली सोना है तो सोना है, इससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो आप अपनी लाइफ के जब छोटे छोटे डिसीजन सही लेने लगोगे ना, तो बड़े बड़े जो डिसीजन है ना, वहां तक डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो इसका रूट कॉज है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग को काम कीजिए। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन और एनी हैवी वर्कआउट, स्लाइटली आप किसी और भी चीज से शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं, बट आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत सॉर्ट हो जाओ।

0: ऐसे ही खूबसूरत गाने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आने वाले हैं।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सभी का वापस से स्वागत है ऑन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं आंत्रा आपके साथ यहां पर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी अगली चिट्ठी की तरफ मैं यहां पर बढ़ती हूं, जो कहता है कि डियर मस्ती, डू वी एवर स्टॉप ग्रीविंग, डज इट गेट बेटर, इट्स बीन 10 years बट आई स्टिल फील लाइक दैट फीलिंग हैज नॉट गॉन एनीवेयर, डज इट गो। वाह, डियर लिसनर, ओके लेट मी ओके, तो मैं आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ जो मुझे किसी ने कहा था और ये लाइन मेरे साथ रही एंड आई काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इट विथ ऑल माय माइट। वो लाइन थी कि डोंट मूव ऑन, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मूव ऑन नहीं करना है किसी चीज से, भूलना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। और पता है जब मैंने आपका लेटर अभी पढ़ा, पढ़ते पढ़ते क्योंकि जो आप लिख रहे हैं उससे मैं फील कर सकती हूँ। मुझे भी आज तक लगता है कि जैसे कल की ही बात हो, मेरे डैड यही थे और फिर एक दिन नहीं थे, और शायद फादर्स डे अभी अभी गुजरा है इसलिए ये बात और भी ज्यादा दिल को मेरे पर्टिकुलरली छू रही है। और मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इज नॉट दैट मैं सैड थी, क्या मैं अब भी सैड होती हूँ, और इस बार इस सैडनेस से जो है भागने की जो है मैंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि इनिशियली दैट्स व्हाट आई डिड बट इट डिड नॉट वर्क एंड इट केम बैक टू मी इन अ वेरी हार्ड फॉर्म। मैं खुद को कहती रही स्ट्रांग बनना है, काम करना है, टाइम नहीं है टूटने का, टाइम नहीं है ग्रीव करने का, और आधे से ज्यादा वक्त शायद इसी सोच में मेरी निकल गया कि अगर मैं बिजी रहूंगी तो शायद

0: एक गाना बनकर, कोई एक स्मेल में, कभी फादर्स डे जैसे कोई एक दिन बनकर। तो अगर 10 साल बाद भी आपको उनकी याद आती है और दिल भर आता है, तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप हील नहीं हुए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने उन्हें बहुत प्यार किया, और प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेट मी टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटूंगी और फिर बताऊंगी कि मैंने ग्रीफ के साथ जो है, हाउ डिड आई डील विद इट, ओके, व्हाट हेल्प्ड मी, एंड शायद उससे आपकी थोड़ी सी कोई मदद हो जाए। टिल देन, लेट्स लिव लाइफ, कीप लिविंग लाइफ किंग साइज, जस्ट लाइक द सॉन्ग टेल्स अस, राइट? स्टे ट्यून्ड टू डियर मस्ती दिल से।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: Oh, I hate making love songs.
1: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
2: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. अगर जस्ट इन केस मैं हूँ अंतरा आपके साथ और अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे एक डियर लिसनर ने बहुत ही हार्टफेल्ट एक सवाल पूछा एंड आई वुड लाइक टू आंसर दैट एक्चुअली मैं दैट उनका सवाल कुछ ऐसा था दैट डियर Masti डू वी एवर स्टॉप ग्रीविंग डज इट गेट बेटर It's been 10 years, I have lost someone, but I still feel like that feeling has not gone anywhere. सच कहूं मुझे लगता है कि ये उन सवालों में से एक है जिसका जवाब हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ढूंढता ही रहता है. So, having said that, my dear listener, मैं आपसे दिल से बिल्कुल एक बात कहना चाहती हूं. बहुत सारे लोग ना ये मान लेते हैं कि अगर इतने सालों बाद भी कोई चीज उन्हें इमोशनल कर देती है ना तो शायद वो उस लॉस को प्रॉपरली डील नहीं कर पाए हैं कि शायद उन्हें अब तक मूव ऑन कर लेना चाहिए था. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है और शायद जिंदगी भी ऐसा नहीं कहती है हमको. आपको स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आपको ये परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आप अभी भी कभी कभी सैड फील कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीफ जो है ना कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पास या फेल हो जाता है. इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होता. हम सब ही अलग अलग हैं, राइट? हम सब अलग तरीके से प्यार करते हैं, हम सब अलग तरीके से याद भी करते हैं. इसलिए प्लीज कभी किसी को ये मत डिसाइड करने दीजिए कि आपको अपने इमोशंस के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है ग्रीफ की सबसे ब्रेव फॉर्म शायद ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दो या उसे हरा दो. शायद सबसे ब्रेव फॉर्म ये है कि आप उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो और फिर भी जिंदगी में जो करना है वो करते रहो. कीप मूविंग फॉरवर्ड. अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था. जब भी मुझे अपने बापी यानी कि मेरे फादर की मुझे बहुत याद आती है, जब भी इमोशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, मैं लिखती हूँ. आई राइट, आई जर्नल अपनी डायरी में उनके बारे में कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ, अगर वो यहाँ पे होते तो मैं उनसे क्या कहती. कभी सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर दिन के बारे में या फिर जस्ट यू नो शेयरिंग वट एवर आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं पहले ऐसा करती थी. वो उस टाइम पे फोन पे होते थे, लेकिन अब वो शायद कहीं पे बैठ के कहीं ना कहीं से वो डायरी पढ़ते हैं. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव. सो राइटिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है. पिछले हफ्ते भी मैंने किसी को यही एडवाइस दी थी और कहा था कि हमारे एक लिसनर ने भी इसका पूरा यू नो शी रियली सेड दैट जर्नलिंग ने उनके माइंड और हार्ट का क्योस भी कई तरीकों से हल्का कर दिया था. सो शी आल्सो कंप्लीटली बिलीव्स इन दैट. और मुझे लगता है कि दिस इज सच अ नाइस थिंग टू डू, क्योंकि जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में होते हैं ना तो वो काफी उलझे हुए से रहते हैं, लेकिन जब वो कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें देखना, समझना, प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. तो डियर लिसनर, अगर आप चाहें आज ही एक जस्ट कहीं पर भी पेज निकालिए, एक डायरी लीजिए और जो दिल में है वो लिख दीजिए. इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, सिर्फ योर ऑनेस्ट हार्ट एंड सच्चाई. हो सकता है उसमें थोड़ा सा दर्द जो है वो बाहर आ जाए और थोड़ी सी जगह बन जाए जस्ट टू ब्रीद. Hope this helps. Really, really hope this helps. Yeah, dear Masti, Dil Se on Radio Masti 24/7 Live.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

राइट, मेरी बारी वापस आ चुकी है. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, एंड दिस इज रेणुका विद यू. चीयर अप गाइस, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट दुख, राइट? ये सब तो है ही, जिंदगी है, तो ऊपर और नीचे, कभी ये कभी वो, तो चलता ही रहेगा, राइट? डियर मस्ती दिल से, वेलकम वेलकम. जी हाँ, इस टाइम मुझे एक ऐसी लड़की की चिट्ठी आई है जो कि अपने 20s में है, बिजी है, लाइफ अच्छी चल रही है, फ्रेंड्स अच्छे हैं. ऑनेस्टली शी सेज शी इज हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ. द प्रॉब्लम इज कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, दे सीम टू बी फार मोर कंसर्न्ड अबाउट माय मैरिज देन आई एम, स्पेशली माय पेरेंट्स. ऑलमोस्ट सारी कॉन्वर्सेशंस ऐसी लगती हैं एक ही टॉपिक पर जा रही हैं, कीप योर आईज ओपन, यू शुड स्टार्ट लुकिंग, व्हाट इफ यू डोंट फाइंड समवन लेटर. आई वॉन्ट टू बी क्लियर, माई पेरेंट्स हैव हैड अ गुड मैरिज. मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप देखते हुए आई हैव नॉट ग्रोन अप और एनीथिंग लाइक दैट. सो इट्स नॉट दैट मैरिज केयर्स मी बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव सीन एट होम. द ट्रूथ इज मच सिंपलर, आई जस्ट डोंट फील इंटरेस्टेड राइट नाउ. I have goals I want to pursue, places I want to travel, experiences I want to have, and honestly, I don't wake up thinking about finding a life partner. Maybe it's my generation. Maybe it's just where I am in life at the moment. But the constant pressure is exhausting. Every family gathering, every wedding invitation, every conversation with relatives feels like an interview about my future marriage plans. How do I make my parents understand that not wanting to get married right now doesn't mean ki mujhe kabhi shaadi nahi karni? How do I deal with the pressure without constantly feeling guilty? And inhone sign off pata hai kaise kiya hai? Happy single, not looking. You know what, sweetheart? I am laughing here not at you, okay? But I am laughing at the situation. मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करके दुनिया को क्या मिलता है. अब रही बात पेरेंट्स की, उनके बारे में मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो नजरिया मेरा थोड़ा सा अलग है. Why don't I play something really interesting for you? All right? आप थोड़ा सा चेयर करो और मैं वापस आके अगले घंटे में आपको इस बात का जवाब देती हूँ और लगाती हूँ आपके साथ मिलके इन लोगों की. That is Cocktail 2 के soundtrack से one of the most trending गानास today. माशूका coming up just for you, sweetheart. Listen to this और आपकी शादी की प्रॉब्लम की भी सोल्यूशन हम निकालते हैं वापस आके. Good evening, everyone. Hi, Mika.

ऑलराइट, वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती, दिल से. देवासी दल से एक ऐसा शो जहां पर आप ही की चिट्ठियां अनोनिमसली हम तक जो पहुंचती हैं, वेल हमें तो पता है आप कौन हो, लेकिन यहां पर पढ़ी जाती हैं बिल्कुल बिना आपके नाम के. एंड ऑफ कोर्स विद आवर टीम ऑफ काउंसलर्स हम कोशिश भी करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे सकें, एक जवाब दे सकें, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल कर दे सकें. वेल, फिलहाल ब्रेक से पहले एक चिट्ठी आई है मेरे पास. हु इज अ वेरी स्वीट गर्ल इन हर 20s एंड शी हैज़ अ जेन्युइन इशू कि भाई मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, मतलब आई नो शादी करनी है, एंड मैं आई एम नॉट इवन अगेंस्ट इट, लेकिन मैं परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप पूरे टाइम मुझे यही कहते हैं, जिस लड़के से मिलो कैसा है, एंड यू नो इवन माई रिलेटिव्स, कहीं भी जाओ एक ही बात. सो She wants to see the world, guys. She doesn't want to be, you know, शादी करके आगे बच्चे कब होंगे, ये सवाल शुरू हो जाएगा. Anything. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो young adults जो आज सुन रहे हैं हमको, they will be smiling because ये वाली जो चिट्ठी है ना, बहुत familiar है. There's nothing wrong with not wanting to get married, guys, in your 20s. और अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है. Important चीज ये है that the decision should come from readiness, not from pressure. Okay? अब चलिए आपके पेरेंट्स की साइड देखते हैं फॉर अ मोमेंट. अब सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना यार, दे आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. उनको लगता है अपने बच्चे की फ्यूचर हैप्पीनेस. दे कम फ्रॉम अ जनरेशन जहां मैरिजेस जल्दी हो जाया करती थी, या एटलीस्ट फाइंडिंग अ पार्टनर वॉज ऑफन सीन एज अ माइलस्टोन कि भाई ज्यादा डिले मत करो. चैलेंज है कि आपका टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन ही अलग है यार. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, विच मे साउंड परमानेंट टू देम, Perhaps try saying, I'm not ready right now, but I'm open to the idea when the time feels right. उससे ना आपके पेरेंट्स की एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी. एंड हियर्स समथिंग एल्स, यू मे नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ द प्रेशर स्टिल, क्योंकि पेरेंट्स का काम, जॉब डिस्क्रिप्शन है चिंता करना बच्चों के लिए. वॉट यू कैन डू इज स्टॉप कैरिंग अननेसेसरी गिल्ट फॉर लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस. बींग सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट नीड्स फिक्सिंग, इट्स सिंपली अ लाइफ ऑफ लाइफ स्टेज, राइट? और मैरिज जो है ना, इट शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू बिकॉज एवरीवन एल्स इज रेडी. रिलेटिव्स पूछ रहे हैं अभी उनके कपड़े तैयार हैं तो क्यों ना एक शादी पे चले जाएं, कैलेंडर कह रहा है टाइम हो गया है, ऐसे नहीं होता. जब इमोशनली रेडी हो गए ना, सब कुछ हो जाएगा. सो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर पेरेंट्स कंसर्न्स, ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर ओन जर्नी, क्योंकि हमारा गोल जिंदगी में शादी करना नहीं है. गोल इज टू बिल्ड अ लाइफ दैट फील्स राइट फॉर यू. ये है डियर मस्ती दिल से, जहां हम मानते हैं कि लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस डिजर्व थॉटफुल टाइमिंग, नॉट सोशल प्रेशर. अगला गाना डेस्टिनी, नाम ही वही है. लवली सॉन्ग कमिंग अप जस्ट फॉर यू एंड योर जनरेशन. गुड इवनिंग.

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

हमारा बबलू डब्लू ऐसे करके है ना, दुनिया कहती हमें हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। लिरिक्स कुछ कुछ ऐसे ही है, लेकिन इस गाने को अगर हम आज भी सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, वो जाग उठता है। हाँ, आप जबरदस्ती उसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो उलझन ही होगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आरजे अनुपम, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड यहाँ मैं शो पर जिस तरह से बातें करती हूँ ना, कई बार आपको भी फील होता होगा कि यार नुपुर के अंदर भी बचपना जो है ना, वो आज भी है और होना भी चाहिए। और आप तक वो बचपना ना पहुंचे तो मेरा आपसे बात करने का क्या फायदा। एनीवेज, डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो अगला लेटर आया है, उसमें अपने बचपने को लेकर इन्होंने थोड़ा सा रिग्रेट फील कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक्चुअली इन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि हाय डियर मस्ती, मुझे ना बहुत एंजाइटी फील होती है जब मैं बच्चों के अराउंड होती हूँ। मतलब मुझे अपने बचपन की भी वो बातें याद नहीं है जो बच्चों को होती हैं, पर मैं दूसरों के बच्चों के आसपास भी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत एंजाइटी फील होती है। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप दूसरे बच्चों के आसपास घूमते हुए अजीब फील कर रहे हैं तो आप अपने बचपन में पहुंचिए, उसे थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए कि उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो शायद आपको बचपन में जीने का मन था और आपको जीने का मौका नहीं मिला। तो आपको बचपन की वो जो कहानियां होती है ना, बचपन का जो फील होता है ना, उसी से आपको इतना ज्यादा नफरत हो गई है कि आज आप हर बच्चे से नफरत करने लगी हैं या करने लगे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ सकती हूँ, तो बच्चे तो कितने मासूम होते हैं। हाँ, ऐसे जबरदस्ती उनके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट रखना, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एंड आई डोंट नो आपकी फैमिली कितनी एक्सटेंडेड है, आपके खुद के भी बच्चे हैं या नहीं, पर आपको अपने बचपन के बारे में सोचना चाहिए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव फील देना चाहिए। शायद आप अपने आसपास के बचपन की जो पॉजिटिविटी है उसे

100 बार करेंगे, वो गलत चीज सही तो नहीं हो जाती ना। एनीवेज, मैं आरजे नूपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। अभी जो मेरे हाथों में लेटर आया है ना, उन्होंने अपनी एक गलती बताई है और शायद वो इस गलती का रिग्रेट भी कर रही है। डेफिनेटली आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। अभी जिनका लेटर मेरे पास आया है, उन्होंने लिखा है, हाय डियर मस्ती, मेरी ना एक आदत है, मैं दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ या फिर कुछ कलीग्स के साथ डिनर पे, लंच पे या कभी भी कहीं जाती हूँ तो मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अपने हिस्से का बिल नहीं देती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो एक थ्रिल है किसी और के खर्चे पे खुद इंजॉय करके आना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। एंड डेफिनेटली जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, ये सही नहीं है। अच्छा सोचिए, आपने जिस पार्ट पे ध्यान नहीं दिया होगा वो ये भी हो सकता है कि आपके पीछे जिस ग्रुप के साथ आप जा रही हैं, जहाँ बैठ रही हैं, जिनका खर्चा करवा रही हैं, वो आपके लिए क्या सोचते होंगे कि अरे यार उसको फिर से लेकर जाना पड़ेगा क्या, वो कभी भी अपना कॉन्ट्री नहीं देती यार, अच्छी बात नहीं है, उसको नहीं लेके चलते। अगर उन्होंने ऐसा आपके बारे में बोला होगा, डेफिनेटली कभी ना कभी तो बोला होगा, ये क्वेश्चन उठा होगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, हाँ। तो चलो, आपके पास एक तरीका है इन सारी चीजों को कंक्लूड करने का। ये जो आपकी आदत है ना बिल ना देने की और इंटेंशनली कोई बहाने बनाने की, तो एक बार के लिए वो सारे लोग जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है उनको धीरे धीरे ना सबको छोटी छोटी सी ट्रीट दो, कोई मौका ढूंढो। आपका बर्थडे हो सकता है, कोई अच्छा माइलस्टोन हो सकता है, कोई और सेलिब्रेशन हो सकता है, आप उस सेलिब्रेशन के लिए उन्हें बुलाइए और ए टू जेड वो सारे खर्चे बजट फ्रेंडली तरीके से आपका जितना पॉकेट अलाउ करे वो आप कीजिए। और अपने ऊपर ये जो आदत वाला एक छोटा सा मार्क लग गया है ना, इसको हटाइए। फिर आपके अंदर जो रिग्रेट आ रही है, ये वाला क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये बहुत कम हो जाएगा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड।
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अंतरा यहाँ पर आपके साथ। यस, हम रेडियो के आपके वो दोस्त हैं जो आपकी चिट्ठियां यहाँ पर डियर लिसनर के उसमें पढ़ते हैं और आप हमें लिखते हैं डियर मस्ती करके, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए अगले लेटर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए। डियर मस्ती, रिसेंटली आई सॉ एन एल्डरली लेडी गेटिंग एंग्री एट अ मदर ऑफ टू ऑन अ बस। The children were crying loudly. The mother already looked stressed and flustered, and on top of that, she got scolded for not knowing how to manage her kids. I stepped in and helped her, but it made me wonder, shouldn't older people understand such situations better? I feel really nice at this point of time, not because of the situation, but for people for opening up their hearts like this, with coming up with these situations and sharing it with us, because kitni baar aisa hota hai humne ye sari cheeze shayad kahin pe witness ki ho and we would have asked this question to ourselves at that point of time, but bas wo utna sa hi reh gaya. So well, coming back to this one, my dear listener, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस moment में जो आपने किया, that was really, really good that you extended your hand और आपने उनकी मदद की। कभी कभी किसी problem को solve करने से ज्यादा important होता है किसी को ये feel करवाना कि वो उस चीज में अकेला नहीं है, और शायद उस mom को उस वक्त वही चाहिए था। अब आपके सवाल पे आते हैं, that shouldn't older people understand better? Ideally, शायद हाँ, लेकिन रियलिटी ना थोड़ी सी आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है। एज हमेशा ना एम्पैथी की गारंटी नहीं होती है, जैसे यूथ हमेशा इमैच्योरिटी की गारंटी नहीं होती है। हम सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि उस एल्डरली लेडी ने अपने बच्चों को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट पर रेस किया हो, हो सकता है उनके टाइम पर एक्सपेक्टेशंस अलग रही हो सकता है वो खुद किसी स्ट्रेस में हो उस वक्त, या हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ सिचुएशन देखी हो, उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं। एंड ऑनेस्टली हम सब कभी ना कभी ये गलती कर देते हैं, राइट? हम बिहेवियर देखते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है वी डोंट वांट टू नो। हम रोता हुआ बच्चा देखते हैं लेकिन पूरी रात नहीं सोई हुई अगर माँ है उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन अगर देखते हैं लेकिन उसके पीछे की एग्जॉस्टन जो है वो नहीं देखते हैं। और शायद यही एम्पैथी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो दिख रहा है उसके आगे देखना। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग उन जॉब्स में से है कि जहां लोग बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं। अगर बच्चा बहुत लाउड है तो प्रॉब्लम, बहुत क्वाइट है तो प्रॉब्लम, स्ट्रिक्ट हो तो इशू, सॉफ्ट हो तो इशू, बीच में जो पेरेंट होता है ना वो बस अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए कभी कभी हमें एडवाइस देने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि डू वी नो द होल सिचुएशन, राइट? यू मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस, क्योंकि कई बार लोगों को क्रिटिसिज्म की नहीं कंपैशन की जरूरत होती है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू डिड एग्जैक्टली दैट, अ हेल्पिंग हैंड, अंडरस्टैंडिंग स्माइल। और शायद एक मॉम को यह एहसास किया कि उसकी साइड पर भी कोई है। तो डियर लिसनर, हो सकता है उस एल्डरली लेडी ने भी अपनी जगह से जो भी समझा हो, हो सकता है वो मॉम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने आई एम श्योर की है। जिंदगी में कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां विलन कोई नहीं होता है, बस एम्पैथी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, और शायद हम सब थोड़ी नहीं काफी और एम्पैथी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? आई होप दैट दिस इज वॉट यू वॉन्टेड टू हियर। होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: और इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही खत्म होने वाला है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। आज इस शो पे हमने कितनी अलग अलग तरह की जो है कहानियां सुनी, चिट्ठियां पढ़ी। किसी ने जेलसी को लेकर अपना दिल खोला तो किसी ने दोस्त को समझाते समझाते खुद को गलत समझ लिया। कोई साइंस समझना चाहता था पर उसकी बात कोई नहीं समझ पा रहा था। कोई 10 साल बाद भी अपने किसी अपने को याद करके इमोशनल हो जाता। किसी को रिलोकेशन का डिसीजन परेशान कर रहा था तो किसी को बचपन से एंजाइटी फील होती है, उस प्रॉब्लम से डील करना नहीं आ पा रहा था। कोई जानबूझकर बिल देने से बच रहा था और समझना चाहता था कि वो ऐसा क्यों फील करता है। और हमने ऐसे मॉम की भी बात की जो अभी थोड़ी देर पहले जो चिट्ठी दी कि बस में दो रोते हुए बच्चों के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रही। और पता है इन सब लेटर्स में एक चीज कॉमन थी, इंसान, बस इंसान। कभी जेलस, कभी कंफ्यूज्ड, कभी हर्ट, कभी एंशियस, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी बिल्कुल टूटने के करीब। और मुझे लगता है कि इसी का नाम जिंदगी है। हम सब अपनी अपनी कहानियों में लीड रोल निभा रहे होते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपनी कहानी में उतनी ही मुश्किल लड़ाई शायद लड़ रहा हो। इसीलिए शायद उसका थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी एम्पथी, थोड़ी सी काइंडनेस दुनिया को और हमें दोनों को बेहतर बना सकती है। और अगर आज किसी भी लेटर में आपको अपनी झलक नजर आई हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं इसमें। बहुत लोग वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बस हर किसी की कहानी का नाम अलग है। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लिसनर्स को जो हमें हमेशा लिखते हैं, अपना ट्रस्ट हमें देते हैं। आप जब अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ एक लेटर नहीं होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, विच वी ट्रूली ट्रूली ट्रेजर। अगर आप भी हमें इसी तरह लिखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर किसी भी ईमेल आईडी से, यू नो, आप भेज सकते हैं listener@radiomasti.com.sg पर। आपकी आइडेंटिटी, वी प्रॉमिस, हमेशा अनोनिमस रखी जाएगी, बस आपकी बात हम तक पहुंचनी चाहिए। मैं आरजे अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ आरजे नुपुर एंड रेणुका एज वेल, फिलहाल के लिए हम लेते हैं इजाजत। आप यूं ही सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ये था डियर मस्ती दिल से और आप इस शो को सुन रहे थे और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

रेगिस्तान रे रेत रे हो रे मारी।

0: आप चलते हुए गाओ।
1: रिम झिम रिम झिम छम छम गुन गुन तिल तिल पल पल रुन झुन रुन झुन।
2: रिम झिम रिम झिम छम छम गुन गुन तिल तिल
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन।
0: बोलो
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन।
0: शाबाश, आगे आगे।
2: बिन बदरावर से सावन।
0: शाबाश, चलो आगे आगे आगे बढ़ो।
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन।
0: फिर से चलो।
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन।
0: शाबाश, आगे आगे आगे।

दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।
1: मधुतम साई धाम परम पावन शिरडी निवासी ज्ञान स्वरूप प्रज्ञा प्रदाता सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को यदि हम अंतरात्मा में धारण करेंगे तो जगत के स्वामी भगवान श्री साईनाथ हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: ओ माय गॉड, नई गांव में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती।
2: क्या क्रेजी गाने के साथ आज फ्राइडे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है, विच मींस इवन द शो इज गोइंग टू बी क्रेजी।
0: रेडियो मस्ती 24/7 जी, हमेशा की तरह फ्राइडे सुबह हम आ चुके हैं। और मतलब आपको और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, हम हैं और आपकी ये सारी सारी बातें हैं। रेडियो मस्ती 24/7 है और साथ में अगला गाना है जिसे कहते हैं मौजा ही मौजा, है ना अंतरा?
2: एब्सोल्युटली। एंड मतलब इससे बेहतर तो आपकी जिंदगी में क्या ही हो सकता है। फ्राइडे मॉर्निंग में आप हो, हम हो एंड मस्ती मैडनेस हो, मोक्ष प्राप्ति हो गई। मतलब इट्स इक्विवेलेंट माय डियर फ्रेंड्स।
0: कॉन्फिडेंस सीखो हमसे, मतलब हम हैं, आपको चाहिए क्या हो सकता है जिंदगी में। बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि मुझे चाहिए हो सकता है, और वो है 325 करोड़ जो रणवीर सिंह ने कमाए हैं धुरंधर से। ओहो हो, 300।
2: मेरे सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, ये जो धुरंधर वाले बाल है ना वो भी चलेंगे मुझे रणवीर सिंह के।
0: तो बाल रख ले, मैं माल रख लेती हूँ, ऐसी क्या बात है। रेडियो मस्ती 24/7 पर आपको क्या चाहिए, बाल या माल, हमें बताइए 9151896 पर। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड लेट्स गो।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारा आज का ये शो। इसमें आपका दिल चोरी नहीं होगा, लेकिन इतना बता सकते हैं कि आप टोटली माइंड बॉगलिंग खबरों को सुनेंगे रेडियो मस्ती 24/7 पर। हमारा अगला नहीं, पहली खबर
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है। इन्होंने जैसे ही हमारा कहा, मेरा तो दिमाग में चलने लगा हमारा बजाज इतने इतने सुर में कहा गाया कि वो बजाज ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया इन माय माइंड।
0: जैसे देखो ये बोलते हैं रिंग रिंग रिंग, दिल का टेलीफोन रिंग रिंग। एक बार मेरे को एक टैक्सी वाले ने बोला था बैठते ही, जब मैं ना बात कर रही थी तो मुझे कहता है तुम्हारी ना बात करने का ढंग ऐसा है जैसे तुम गाना गा रही हो। मैंने मेरे घर वालों से पूछ, हाँ घर वालों से पूछ मेरा, वो बोलते चुप हो जा। एनीवे, तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी फ्लाइट हो जाए डिले, जिसकी वजह से आप फंक्शंस मिस कर दें, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में इशू हो जाए, या आपको सपोर्ट नहीं मिले जैसा कि आपने बुक किया हो, जैसे कि कार्ट बूढ़े लोगों ने बुक करी हो कि यू नो हमें थोड़ी हेल्प चाहिए सीनियर सिटीजन्स ने, और वो ना मिले एयरपोर्ट पे एंड ऑल दैट, तो आप डेफिनेटली सू कर सकते हैं ऑलराइट एयरलाइन को फॉर लैक ऑफ सर्विस और फॉर कॉजिंग एग्नी एंड ऑल दैट, राइट। और यही किया एक इंडियन कपल ने। वेल दे वर ट्रैवलिंग अमेरिकन एयरलाइंस, एंड अमेरिकन एयरलाइंस पहले थी फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बाद शिकागो जाना था उनको। अब क्या हुआ कि उनकी जो न्यूयॉर्क टू शिकागो की फ्लाइट है वो हो गई कैंसिल, 10 घंटे उनको बैठना पड़ा एयरपोर्ट पे। अब मतलब उनके मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ है जो भी है, उसके बाद फ्लाइट कहीं और लेके गई, कहीं और से कहीं और, ये करते करते उनके जो जिस रीजन से दे वर गोइंग दे ऑल्सो मिस दैट। अब वो सब करते हुए उन्होंने मेंटल एग्नी और बहुत कुछ हरासमेंट एंड ऑल दैट का एक एफिडेविट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया अलॉन्ग विद बोर्डिंग पासेस एंड ऑल। एयरलाइन की तरफ से कोई नहीं आया, एंड देयरफॉर दे वर पेड 2.2 लाख पर पर्सन फॉर ऑल दैट हैपेंड। जी जी बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में?
1: मैं कहती हूँ ध्यान देना चाहिए, ध्यान इज द मेन थिंग। ये सारी चीजों पे ना हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता कि अच्छा हो गया, हम वाइन करते रहते हैं, बाद में हम लोगों को किससे बताते भी है, बट वी नेवर रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आई थिंक we should be more careful and conscious of these loopholes.
0: Absolutely. I think बहुत important है क्योंकि airlines जो है ना बच के चली जाती है, लेकिन मुझे चिंता पता क्या है अंतरा, कि कुछ airlines पहले बेचारी इतनी losses पे चल रही है, अगर उन पे इस तरह के cases होते चले गए तो वो तो गई
1: है ना? कोई तो सोच रहा है बेचारे airline वालों के, मतलब टिकट नहीं दे रहे वो हमें फ्री, रेणुका कुछ नहीं होने वाला।
0: ओके ओके,
2: you're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere anytime the desi way.

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: 3, 2, 1.
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
3: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई मुझे ऐसे बहुत नायाब टाइप के इन्वेंशन ना अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक वी कैन पुट इट टू यूज अच्छे अच्छे तरह से.
3: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
4: Radio Musti 24/7. जी हाँ, यहाँ पर हो रहे हैं 7:28 और रेणुका और अंतरा आपको लेकर जा रहे हैं अजीब गरीब खबरों की दुनिया में. क्यों अंतरा, क्या खबर लाई हो छमिया?
2: मैं सोच रही हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक जिस तरह का इन्होंने बनाया है, इट्स वेरी नाइस. एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है. अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ दिनों में, एंड स्पेशली इट हैपेंस विद मी जब वो ट्यूसडे मॉर्निंग वाले शो पे जल्दी उठना पड़ता है, बट वो जो स्नूज बटन होता है ना, मतलब वो ऐसी चीज बनाई है उन्होंने, कभी कभी वो इतनी बार स्नूज हो जाता है कि फिर अचानक से आप आँख खोलते हो कि ओ बेटा अभी तो एकदम ही थोड़ा सा टाइम ही पता है, एंड देन वी काइंड ऑफ स्टार्ट रनिंग एंड रशिंग एंड कि चलो छोड़ो यार नहाएंगे, आके नहा लेंगे. पहले नौकरी करने जाते हैं, वैसे वाली सिचुएशन जाती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अलार्म क्लॉक वेयर जो अलार्म क्लॉक जब बजना शुरू होगा, सो इट विल थ्रो थ्री पीसेस ऑफ पजल इन द एयर, तीन अलग अलग पीसेस. सो उस आवाज को बंद करने के लिए यू विल हैव टू गो पिक दोस पजल्स एंड पुट इट बैक इन द अलार्म क्लॉक. बाय द टाइम यू विल डू दिस यू विल बी डेफिनेटली 110% अवेक.
4: अच्छा, मतलब सुबह सुबह उठ के एक्शन करो, नहीं तो स्नूज करते रह जाओगे. पर हम क्यों खरीदेंगे ऐसी अलार्म क्लॉक जो अपने को ही टॉर्चर करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए. तुम लोग
2: नहीं, रेणुका सैटरडे संडे नहीं यूज करेंगे, बाकी दिन के लिए इज फाइन.
4: बाकी दिन भी यू नो After I wake up, I need at least 30-40 minutes to come to my senses. मुझसे कोई बात करता ना, मैं उन्हें काट लेती हूँ. तुझे नहीं पता मैं मंडे सुबह का शो कैसे करती हूँ. You don't want to know. आज तो फिर भी तू मिल जाती है. Oh my God. Okay. गाना.
2: Okay.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: guys.
1: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
0: ऑलराइट, आपका यहाँ पर स्वागत और रेडियो मस्ती 24/7 पर. हम तो एक ही बात कहेंगे भाई कि अगर कोई आपके पास आता है कि हमको रेफर कर दो, तो ब्लाइंडली कभी भी रेफर नहीं करना चाहिए नौकरी के लिए.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: क्यों भाई, करना चाहिए? तुमने कभी किया है किसी को ब्लाइंडली रेफर?
3: नहीं जी, ना ऐसा मौका ऐसा कुछ आया है हाथ में, ना खुद के लिए कभी ऐसा सोचा है. अब तो मतलब क्या ही बताए, अपनी तारीफ क्या ही करे. जिंदगी के बाद भी वाला सिचुएशन हो गया है यहाँ पर.
0: तो ये तो अच्छी बात है ना, बड़ी किस्मत से अच्छे बॉसेस मिलते हैं. ये मैं तुम्हें हर हफ्ते याद दिलाती हूँ.
3: मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ.
0: राइट. सो भाई, ऑन रेडियो मस्ती ऐसी बात है कि टेक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हमेशा कंपनीज में ये रहता है, इफ यू रेफर समबडी यू गेट अ रेफरल फी, इफ यू रेफर समबडी एम्प्लॉयज को कहा जाता है $1,000 मिल जाएंगे, यू नो. आपको तो आप भी कहते हो ठीक है यार, किसी को नौकरी मिल जाएगी और कंपनी को भी फायदा हो जाएगा और मुझे पैसे के पैसे मिल जाएंगे, तो व्हाई नॉट. लेकिन भारत में इस समय किसी ने किसी को रेफर किया. ऑल राइट, नाउ दिस पर्सन व्हेन ही केम फॉर द इंटरव्यू, तो उसको कोडिंग का एक छोटा सा सवाल दिया गया, थ्री सम कोडिंग का. अब थ्री सम एक वर्ड नहीं है, नंबर तीन सम अंतरा. ओके, इट्स फ्राइडे,
3: थैंक यू.
0: या देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि वो फेल हो गया वो इंसान. ठीक है, अब हमने कहा ये किस तरह की बात है. तो उसको तो निकाला ही निकाला इंटरव्यू वाले ने, लेकिन जिसने उसको रेफर किया था उसको चिट्ठी गई. उसको कहा कि आपने जिसको रेफर किया था वो एक बेसिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया है, तो इससे हमें आपके जजमेंट पे भी सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए अब हम आपका इंटरव्यू भी करेंगे. तो आप इंटरव्यू पे दोबारा से आओ, चाहे आप हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहे हो, बट वी वॉन्ट यू टू.
3: But this is good, actually very very good. वो ना बहुत आपने देखा होगा ये सिस्टम कि मेरे वो जो जेठ के बहू के दिस है, तुम करा दो ना प्लीज, तुम अपने उसमें करा दो ना करके. कितने लोगों की ऐसे मतलब विदाउट नोइंग कि भाई उसको काम आता है नहीं आता है, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम एज एन एम्प्लॉयर, यू हैव टू बी अवेयर.
0: ऐसे मत करो यार, तुम ऐसे मत करो. बेचारा उसकी भी नौकरी खतरे पे चली गई, ये कौन सा तरीका हुआ? अब कौन सा एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम को बिल्कुल सीरियसली लेगा? गलत बात. एचआर वेरी रॉन्ग. एनीवे, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट एचआर इन एनी केस.
3: ओह माय गॉड.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट। 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अतरंगी कहानियों का एक ही जगह मस्ती मैडनेस आपके फ्राइडे को निखारता हुआ।
3: वाह मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है।
4: क्या कितना घटिया शायर का शायराना लग रहा था ये।
2: You're most welcome. Thank you.
4: But,
2: कुछ ऐसे एक केस लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर कि भाई ये जिंदगी कितनी यूनिक और नायाब होती है रेणुका कि पता नहीं चलता कि कौन किस मोड़ पे मिल जाए और वो हमारा क्या लगने लगे। भाई 2014 की ये बात है, ये केस था जहाँ पे 39 ईयर ओल्ड ये जो बंदी है फ्रॉम ब्राजील, नाम है एड्रियाना, वो एक टीवी शो पे आई, रेडियो शो पे आई बिकॉज शी वॉज फाइंडिंग हर मदर जिन्होंने इसको अबैंडन कर दिया था व्हेन शी वाज अ बेबी। ओके, शी वाज इवेंचुअली रियूनाइटेड अपनी मम्मी से हुज नेम इज मारिया, ओनली टू डिस्कवर दैट मारिया यानी कि उसकी मम्मी ने एक और बच्चा अबैंडन किया था, लियांड्रो।
4: अच्छा,
2: वो टर्न्ड आउट टू बी एड्रियाना का हस्बैंड।
4: ओ यार, यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल।
2: आप देख रहे हो किस्मत का खेल।
4: हाँ, ये बड़ी गंदी चीज हो गई है जिंदगी में। ये पहले भी हमारे पास एक ऐसी न्यूज आई थी कि इस तरह से जो स्टेप भी नहीं थे, रियल ब्रदर और सिस्टर थे, जो कि बाद में जाके पता लगा। और फिर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ऑफकोर्स द बैजेस ऑफ बॉलीवुड। रिमेम्बर फिल्में बिल्कुल रियलिटी पर ही बनती है। अगर आपने नहीं देखी है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तो जाके देखें जरूर, क्योंकि कुछ कहानी में ट्विस्ट इसी तरीके का आया था।
2: हाँ, बस यही एक ट्विस्ट है।
4: हाँ, और यही एक ट्विस्ट था, जैसे धुरंधर में ट्विस्ट आया था ना, राकेश बेदी निकला था एंड में। सो
2: थैंक यू
4: अगले घंटे।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: एक्शन, कॉमेडी, केओस एंड अ स्टार स्टडेड कास्ट। Out loud moments to larger than life jungle ka madness. This entertainer promises a roller coaster ride for the whole family.
3: Welcome to the jungle.
2: Hurry, book your tickets now. Welcome to the jungle, releasing island wide on 26th of June at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.
4: Trailer khatam, paisa hazam.
5: Raaz ki baat batau. मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है। अरे आपका स्पेशल शो, आप बोलते हो तभी तो आते हैं हम।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: और ये सोचना बंद कर दो आप सभी कि कहाँ से लाते हैं खबर। देखो ले आते हैं ना, इंजॉय करो आराम से बैठ कर।
0: कोई नया सवाल पूछो हमसे। तो भाई अब मैं बड़ी खुश हुई इस बात को जान के कि क्या होता है कि एक फ्लाइट होती है वो फुल फ्लेज्ड वाली, जिसमें जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है, उसमें आप जाते हो तो आपको मिलता है खाना, आपका पूरा बैगेज होता है, सब कुछ होता है, राइट। एक होती है स्कूट, ठीक है, अब स्कूट में आप जाते हो तो आपको खाना वाना नहीं मिलता पर आप खरीद सकते हो, राइट। एक होता है इंडिया, इंडिया होता है जुगाड़, उसमें दोनों का मजा है, एयर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है।
2: तो आपका फेवरेट, यस
0: बिल्कुल। तो हाल ही में उन्होंने एक अनबंडल्ड इकोनॉमी बेसिक फेयर ऐड किया है, ओके, एंड दिस इज ओनली ऑन सिलेक्टेड डोमेस्टिक जो रूट है। तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो मील्स मिलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, उनको हटा दिया है, और आपको खरीदने के लिए बिल्कुल ऑप्शंस दे दिए। तो उससे क्या है, आपकी जो फ्लाइट का फेयर है वो थोड़ा सा कम हो गया। इस समय चल रहा है ट्रायल। सो अब हमें पता है कि फ्यूल के कॉस्ट थैंक्स टू सर्टेन पीपल इन द वर्ल्ड इतने ज्यादा ऊपर हो गए हैं। तो अब क्या है कि पैसेंजर्स कहते हैं यार यहीं तक तो जाना है, इतनी महंगी टिकटें होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। सो डोमेस्टिक रूट्स पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पर। 15 किलो का आपको चेक्ड इन बैगेज अलाउड है, आपको 7 किलो का कैबिन अलाउड है बैगेज, और कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी भी अलाउड है, ठीक है। क्या नहीं है उसमें इज द स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, ठीक है,
2: ओके।
0: तो आपको इट्स फाइन, आप मतलब आप मना कर दो, नहीं तो
2: इट्स डूएबल, हाँ,
0: नहीं तो आप वहां पे खरीद सकते हो, वो बेच भी रहे हैं, तो सही है ना। मुझे तो ये जुगाड़ आइडिया बहुत पसंद आया, आई थॉट रियली वेरी गुड,
2: इट्स अ नाइस थिंग। मतलब मेरी मम्मी होती तो बोलती कि कोई नहीं मैं रह लूंगी, 4-5 घंटे तो भूखा रहना है, तो क्या हो गया, नहीं लेंगे
0: बस
2: खाना।
0: द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट इज वो पराठे और अचार की स्मेल जो अब घर से स्मगल होकर आएंगे, कि पड़ोस वाला जो वहीं का खाना खा रहा है वो बोलेगा भाई तू ही बेच दे मेरे को, यही खा लेता हूँ मैं। मित्रों के साउंड ट्रैक से ये वाला गाना इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। स्टे ट्यून्ड,
3: रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: ये जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे, पर एक बार बोले पची मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हाँ।